हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर, एफएम पर 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थिल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज के विचार में सुनते हैं अपने काम से मोहब्बत करें, इस विषय पर विचार आलेख और वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
1: कार्य आजीविका का मूल आधार है। यदि आप एक स्वावलंबी और श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको कोई न कोई काम चुनना पड़ेगा। ये बात हम सब जानते हैं, इसलिए काम के क्षेत्र में इतनी प्रतियोगिता है। हमें इस प्रतियोगिता से भयभीत नहीं होना है, बल्कि अपनी क्षमता और श्रम शक्ति के आधार पर कोई न कोई काम चुन लेना होगा। आज निजी क्षेत्र में कार्य की कोई कमी नहीं है और सरकारी सेवाओं में भी अच्छी संभावनाएं देखने को मिल रही है। आज काम प्राप्ति के क्षेत्र में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अतः जो काम आपने सोचा है उसे प्राप्त करने की पूरी शिद्दत से कोशिश करनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब तक हमें वह काम या सेवा नहीं मिलती तब तक हम हवा में मंसूबे बांधते हुए ऊंची उड़ान भरते हैं कि अगर हमें यह काम मिल जाए तो हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, अपनी जी जान लगा देंगे। लेकिन कई दफा इसके बिल्कुल उल्ट आचरण हम कर बैठते हैं। हम अपने ही काम से जी चुराते हैं, काम चोरी करने लग जाते हैं या अपने काम की आलोचना करने लगते हैं। ये भी कोई काम है? इस काम से बेरोजगारी भले थे, यार मुझे तो अच्छी सीट नहीं मिली, उस फलां के पास अच्छी सीट है, वगैरह वगैरह। इस संदर्भ में संत ओशो की सुनाई कहानी यहाँ पर याद आ रही है। एक भवन का निर्माण कार्य हो रहा था। एक साधु उधर से गुजरता है। उसने मजदूरों से पूछा, भाई क्या काम कर रहे हो? एक मजदूर बोला, काहे का काम बाबा जी, दिन तोड़ रहे हैं, हाथ फोड़ रहे हैं, रोजी रोटी के लिए मरना खपना पड़ रहा है। तब उस संत ने उसी मकान के दूसरे हिस्से में काम करने वाले मजदूर से पूछा, क्या करते हो नौजवान? तो नौजवान बोला, साहब किसी के सपनों का घर बना रहे हैं, अच्छी दिहाड़ी मिल जाती है, काम बढ़िया चल रहा है। तब उस फकीर ने तीसरे मजदूर से पूछा, आप क्या कर रहे हो भाई? तो उस मजदूर ने उत्तर दिया, मंदिर बना रहे हैं बाबा, पूजा कर रहा हूँ, इतना सुंदर बनाएंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि उसने मुझे इस काम को करने का मौका दिया। श्रोताओं, इस कहानी में तीन स्थितियां हैं, जबकि काम एक ही है, लेकिन तीनों मजदूरों की मनस्थिति भिन्न भिन्न है। एक मजदूर रोटी के लिए कर रहा है, एक मजदूर काम भर के लिए काम कर रहा है, जबकि तीसरा श्रद्धा भावना से पूजा के लिए काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं, क्या हम अपने काम को महज रोटी का जरिया समझते हैं या हम मजदूरी भर या कि हम भी इस कार्य को पूजा समझकर करते हैं। वो तो तीनों स्थितियों में काम रहा है, पर बात नजरिए की है, कौन सा नजरिया बेहतर है। जाहिर है जिसमें पूजा भाव से अपना काम किया जाता है, क्योंकि इस भाव से किया गया कार्य मात्र कार्य नहीं बल्कि दिव्य उदाहरण बन जाता है और हमारी आत्मा को संतोष प्रदान करता है, और यही श्रेष्ठ मार्ग है। जब तक आत्मतोष नहीं, आत्मा की प्रशंसा की प्राप्ति न हो, कोई भी काम अर्थहीन है। इसलिए श्रोताओं, आपको चाहे छोटा काम मिले या बड़ा काम, उससे मोहब्बत करें, अपने काम का रोना धोना बंद करें कि हे भगवान ये क्या काम दे दिया, ये भी कोई काम है, काश हमें और अच्छा काम मिल जाता। भले ही फिर आपको अच्छे से अच्छा काम मिल जाए, लेकिन अगर मनोदशा पेट भरने तक की है तब तक हर काम व्यर्थ है। माना कि पेट भरना जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी भाव से काम करते रहेंगे तो अतिरिक्त थकान और बीमारियों के कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप काम जैसा भी हो उसे पूजा भाव से करें। इससे ये होगा कि एक तो आपके सर का बोझ हल्का हो जाएगा, जिससे आपका सिर हमेशा झुका रहता था, अब आपका वही सिर गर्व से ऊंचा उठता हुआ प्रतीत होगा।
0: आज का विचार में अभी आप सुन रहे थे अपने काम से मोहब्बत करिए, इस विषय पर विचार आलेख और वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं, भक्ति में वो शक्ति है जो आत्मा और मन को परमात्मा से जोड़ती है। तो आइए ईश्वर का स्मरण करते हुए सुनते हैं भक्ति स

श्रोताओं, स्वर जब श्रद्धा से निकलते हैं तो भजन बनते हैं, और भजन जब हृदय से निकलते हैं तो सीधे प्रभु तक पहुंचते हैं। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं ये अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, भक्ति में वो शक्ति है जो आंसू को मुस्कान में, निराशा को आशा में और जीवन को उत्सव बना देती है। आइए सुनते हैं अगला भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार हैं श्री सतीश भाटिया। आज आप सुनेंगे बालकांड की दोह संख्या 236 की प्रथम चौपाई से दोह संख्या 237 की अंतिम चौपाई तक। गायक स्वर अनुराधा पौडवाल का है।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी के विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार थे श्री सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

8:30 पर सौरभ कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता ग्रह विज्ञान विषय में रोजगार के अवसर। वार्ताकार होंगे श्री शशि व्यास। 9:10 पर सुनिए लोक संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 12:10 पर आप सुनेंगे रूपक हिंदी कहानी का नाट्य रूपांतरण इज्जत। लेखक श्री मदन सैनी, नाट्य रूपांतरकर्ता श्री प्रमोद कुमार शर्मा। 1:05 पर महिलाओं के लिए महिला जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा। चर्चा के विषय रहेंगे पारंपरिक सांस्कृतिक विरासतों को सहेजती महिलाएं, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, प्रभाव और उपाय, बच्चों के मानसिक विकास के लिए कहानी सुनाने की परंपरा। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता महिला सशक्तिकरण आवाम पंचायतीकरण। वार्ताकार होंगी डॉक्टर अरुणा भारद्वाज। साथ ही सुनेंगे रसोई की बातें, ब्यूटी टिप्स और गीत संगीत। संध्या 5:05 पर युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण किया जाएगा। आज की बात का विषय रहेगा जीवन जीना एक कला है। लघु जानकारी सुनेंगे मोती झील भरतपुर, सुकून की तलाश भी जरूरी है लक्षद्वीप और राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। साथ ही रोजगार समाचार और गीत संगीत।

संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:40 पर जिले की चिट्ठी। संध्या 7:00 ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण होगा। चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्य, कैच द रेन अभियान, किसान क्रेडिट कार्ड, वर्षा काल में बेहतर पशु प्रबंधन और लोक गीत। रथ 9:15 पर आप सुनेंगी फिल्म संगीत, 9:30 पर पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम होगा। 9:15 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। रात 10:00 खेल जगत कार्यक्रम जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: 10:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे कुछ चुनिंदा गजलें। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
1: किसान भैया राम राम। आज बात करा पशुपालन हेतु केंद्र सरकारी योजना के बारे में। पशुपालन वास्ते केंद्र सरकारी घनकरी योजना है, जकर उद्देश्य ओ है कि पशुपालन में बढ़ावा मिले, लोगों ने रोजगार साधन मिले और सागे सागे पशुवारी नस्ल रो सुधार हुए, दूध रे गुणवत्ता में सुधार हुए और नस्ल रो भी सुधार हुए। तो पशुपालन वास्ते केंद्र सरकारी घनकरी योजना में सबसे पहली आप बात करा पशुपालन अवसंरचना विकास कोष रे बारे में। ई योजना रे अंतर्गत पशुपालन जकी अवसंरचना है वास्ते एक विकास कोष बनाई जो है, और वो विकास कोष जो है पशुपालन और डेयरी विभाग रे तहत एक प्रमुख योजना रूप में मैंने चलाई जा रहा है। इन मैंने जगह निवेशक है बीएनए वित्तीय सहायता देवण ने वास्ते 15,000 करोड़ रुपया एक कोष स्थापित करी जो है और

0: योजनामा सबसे पहिली आपा बात करा पशुपालन अवसंरचना विकास कोष रे बारे में। ई योजना रे अंतर्गत पशुपालन रे जकी अवसंरचना है बिर वास्ते एक विकास कोष बनाई जो है और वो विकास कोष जो है पशुपालन और डेयरी विभाग रे तहत एक प्रमुख योजना रूप में मैंने चलाई जा रहे है। इन मैंने जका निवेशक है बियाने वित्तीय सहायता देवन ने वास्ते 15,000 करोड़ रूपया रो एक कोष स्थापित करी जो है और कोष रो उद्देश्य ओ है की अगर कोई भाई पशुपालन वास्ते ऋण लेवे तो भी ऋण रे मैंने 3% ब्याज रे छूट दे सके है। सगे सगे पशु वास्ते ऋण जो है वो 6 साल तक रे अवधि वास्ते मिलिया करे है और अगर कोई किसान भाई कुछ विपरीत परिस्थिति के कारण 6 साल रे अवधि मायने ऋण नहीं चुका पावे तो बिना 2 साल तक रे मोहलत दी जा सके। सगे सगे इन मायने क्रेडिट गारंटी योजना भी चाली जा करे है। पशुपालन वास्ते बिना उधार चीज है तो क्रेडिट गारंटी दी जा सके। ई योजना रे कवरेज रे मायने कई चीज शामिल है ज्या की ऋण अगर लो डेयरी प्रसंस्करण वास्ते या डेयरी प्रसंस्करण रे बुनियादी ढांचे में सुधार रे वास्ते ऋण लेओ तो वो ऋण जको है ई योजना रे अंतर्गत आ जावे। ई मूल्य वर्धित उत्पाद रो अगर कोई विनिर्माण करे तो इसी स्थिति में भी पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बिने ऋण दे सके। कोई पशु चारा संयंत्र री स्थापना करे तब भी बिर वास्ते ऋण री उपलब्धता रहे। दूसरी जकी योजना है बाहे डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष। ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड रे द्वारा वो एक कोष स्थापित करी जो है इरो उद्देश्य है डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा रो विकास करनो। इन महीने देश भर जका भी राज्य है डेयरी परिसंघ है जिला दुग्ध संघ है दुग्ध उत्पादक कंपनियां है बहुराज्य सहकारी समिति है इन अलावा NDDB सहायक कंपनियां है इन्हें ऋण सहायता प्रदान करनो और जका लोग ऋण लेवे इन महीने बियाने के पात्र अंतिम उधारकर्ता अंग्रेजी माने के एलिजिबल एंड बोरोवर्स और इरे अंतर्गत समितियां होया करे है नाबार्ड रे माध्यम से ऋण ले लेवे और समितियां जको है पशुपालका ने लाभ पहुंचा। पशुपालन वास्ते केंद्र सरकारी तीसरी योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन जका ने NLM भी किया करे है। ई योजना रो फोकस जको है उद्यमिता विकास चारा विकास मुर्गी पालन भेड़ बकरी पालन सुअर पालन और इयारे सागे सागे मुर्गी भेड़ बकरी सुअर रे नस्ल रे सुधार माते है। आ योजना जो को है कई उप मिशन में आप रे मायने समाहित कर रखियो है और उप मिशन है पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास पर उप मिशन फीड यानी कि चारा विकास माते है उप मिशन विस्तार और नवाचार माते है उप मिशन। उप मिशन ने समेटते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन बनाउडो है। जगह जगह छोटा छोटा पशु पक्षी होया करे लोग याने आजीविका वास्ते पाल्या करे है या फिर कोई या दूसरा कारण सुने पड़े बार वास्ते आ योजना लाभकारी है। अगली योजना है डेयरी गतिविधियों में लगोड़ा डेयरी सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन समर्थन वास्ते आ योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित करी जा रहे है और इर महीने भी एक कोष राखोड़ है। इरो उपयोग कार्यशील पूंजी वास्ते आसान ऋण प्रदान करने वास्ते करी जाए ताकि सहकारी समिति और डेयरी गतिविधियों में लगोड़ा जगह किसान है उत्पादक संगठन है इसे किसान ने स्थिर बाजार तक पहुँच बनाने महीने बियाने सक्षम बनाया जा सके। एक महत्वपूर्ण और योजना है पशुपालन वास्ते इरो नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ई योजना रे मैंने कही है कि पशुआरे वीर्य उत्पादन सुविधा जकी है और इर अलावा नर पशु रे गुणोत्तर मैंने सुधारने वास्ते वो कार्यक्रम चलाई जा रहे। किसान ने उच्च आनुवांशिक योग्यता वाला नर पशु जका है बछिया या फिर सांड के दो मेरे उत्पादन और आपूर्ति वास्ते नस्ल गुण फार्मारे अगर कोई बनावे तो बिना 50% पूंजीगत सब्सिडी भी मिल सके है। कृत्रिम गर्भाधान जको है अब किसान आरे दरवाजे तक पहुंचाने वास्ते भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन काम कर रही है। इर मायने कई तकनीक है इर माध्यम सु जो की देसी नस्ल है बियाने संवर्धन और बियाने विकास रे वास्ते काम करी जाए। पशुपालक जो भाई जगह है बियाने ना सिर्फ दूध री उत्पादकता बढ़ जाए बल्कि जगह पशु है वे बीमार भी कम पड़े और तापमान ने भी सहन करने री ज्यादा क्षमता रखे इसी नस्ल रो विकास हो सके। देसी नस्ल रे सुधार रे मायने आयोजन जको है खासो काम करियो है और इरे माध्यम सु ही आज देसी नस्लारो सुधार हो रही है। सीमावर्ती क्षेत्र में जका पशुपालक भाई है बेरो लाभ ले रिया है चूंकि पशुधन में 70% कार्य महिलावा करे इस वास्ते महिलावा वास्ते भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन बड़ी उपयोगी है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। पशुपालन हेतु केंद्र सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है लोक भजन।

0: अन्तरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीयपरीक्षणे अम्ब्लिकल् तन्त्रस्य पृथक्करणप्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीयपरीक्षणे तावत् शीर्ष आवरणपृथक्करणक्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखण्डतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1%तमो भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी ऐप इत्यस्य अथ च MyGov इति मुक्त मञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मन्त्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्री शाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्री शाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सहापि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयं आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षाकार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारीभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। FM पर आप हमें 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। सवेरे के 7 बजे हैं, सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, प्रकृति ने हमें जीवन के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान की है और पेड़ इस अनमोल धरोहर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं, छाया देते हैं, फल, औषधियां और पर्यावरण का संतुलन प्रदान करते हैं। यदि

आज अधिक से अधिक पेड़ लगाएं तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ जीवन का अमूल्य उपहार दे सकते हैं। श्रोतों, आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की जो कटाई है, इस वजह से पर्यावरण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करे। केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है श्रोताओं, उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प ले लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे और एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगे।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, नवाचार का जो नया दौर है वो केवल नई तकनीक तक सीमित नहीं, बल्कि नई सोच, नई समाधान और समाज की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने का नाम है। आज का युवा अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जी हां, स्टार्टअप इंडिया अभियान, जिसका उद्देश्य है भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार खोलने का अवसर देना और साथ ही साथ इस पहल के माध्यम से नए उद्यमों को पंजीकरण में सरलता, कर संबंधी कुछ रियायतें, वित्तीय सहायता के अवसर, मेंटरशिप और उद्योग जगत से जुड़ने के मंच उपलब्ध कराना है। श्रोताओं, आज भारत दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। फिनटेक, हेल्थटेक, एग्रीटेक, ऐसे बहुत सारे जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप नए समाधान विकसित कर रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, स्थानीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान मिल रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। नवाचार का नया दौर केवल नई तकनीक तक सीमित नहीं, बल्कि नई सोच, नए समाधान और समाज की जरूरतों को भी बेहतर ढंग से पूरा करने का नाम है।

0: पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, अगर सच्चे साथी की बात की जाए जो हमें निरंतर सही राह पर ले जाए, तो हम बात करेंगे किताबों की। जी हाँ श्रोताओं, किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी, सबसे सच्ची, शांत और विश्वसनीय साथी होती है। वे बिना किसी स्वार्थ के हमें ज्ञान देती है, हमारी सोच को व्यापक बनाती है और जीवन को सही दिशा दिखाती है। श्रोताओं, एक अच्छी पुस्तक न केवल जानकारी देती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व, हमारे संस्कार और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी समृद्ध बनाती है। आज के डिजिटल युग में जहां हमारा अधिकांश समय मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर बीत जाता है, वहां प्रतिदिन कुछ समय किताबों के लिए अगर हम निकालें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। पढ़ने की आदत हम में ही नहीं बच्चों में भी कल्पना शक्ति, भाषा कौशल और एकाग्रता को बढ़ाती है। वहीं बड़ों के लिए ये निरंतर सीखने और मानसिक विकास का माध्यम बनती है। श्रोताओं, आज के समय में जहां बच्चे सोशल मीडिया की ओर भाग रहे हैं, हाथों में मोबाइल लिए बैठे हैं, वहीं अगर हम बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित कर दें तो वो नियमित रूप से किताबों को पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और अपना समय एक

अच्छे और विश्वसनीय साथी के साथ बिताएंगी। तो आवश्यकता इस बात की है श्रोताओं कि हम मानसिक विकास के लिए निरंतर सीखें और पढ़ें। हम ये संकल्प लें कि नियमित रूप से कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे और बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। श्रोताओं, ज्ञान की इस अमूल्य परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। किताबें ऐसी सच्ची साथी है श्रोताओं, जो हमेशा हमारा साथ निभाती है और कभी धोखा नहीं देती।

श्रोतम, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदा सकारात्मक सोच का बना रहना आवश्यक है। सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कही जाती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हर चुनौती हमें एक नए अवसर के रूप में दिखाई देती है। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास को बढ़ाती है, मन को शांत रखती है और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। श्रोताओं, जीवन में सफलता केवल प्रतिभा या भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे विचार, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा का दीप जलाए रखता है, वही कठिनाइयों को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो श्रोताओं, ये आवश्यक है कि अपने विचारों को सदा सकारात्मक बनाए रखें, दूसरों को उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें और हर दिन नई ऊर्जा, नए विश्वास और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि सकारात्मक सोच ही वो शक्ति है श्रोताओं, जो सपनों को साकार करने

श्रोता, जीवन सुख और दुख, सफलता और असफलता का सुंदर संगम है। कठिनाइयां हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन उनसे घबराने की बजाय उनका साहस पूर्वक सामना करना ही हमारी सच्ची जीत है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और पहले से अधिक मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखता है, वही अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। असफलता अंत नहीं श्रोताओं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। दुखों से न घबराएं, हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सच्चा अर्थ है। तो श्रोताओं, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है।

स्वतः जीवन में रिश्ते, परिस्थितियां और समय बदलते रहते हैं, लेकिन ईश्वर से जुड़ा हमारा विश्वास हमें हर परिस्थिति में संभालता है और शक्ति देता है। जब मन निराश होता है तो प्रभु का स्मरण आशा जगाता है। जब रास्ते कठिन लगते हैं तो वही हमारा मार्गदर्शन करता है। ईश्वर से जुड़ना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं श्रोताओं, बल्कि अच्छे कर्म करना, सत्य का साथ देना, दूसरों की सहायता करना और हर परिस्थिति में विश्वास को बनाए रखना ही सच्ची भक्ति होती है। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है उसके भीतर साहस, धैर्य और संतोष का संचार होता है। तो श्रोताओं, ईश्वर से रिश्ता जोड़े रखें, क्योंकि वही हर परिस्थिति में हमारा सच्चा साथी है। जीवन में प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण, प्रार्थना, आत्मचिंतन में अवश्य निकालें, क्योंकि ईश्वर से जुड़ा विश्वास हमें कठिन से कठिन समय में टूटने नहीं देता, गिरने नहीं देता, बल्कि हमारा सच्चा साथी बनकर हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। तो श्रोताओं, ये था आज की सुप्रभात का अंक। आज्ञा दीजिए कविता वर्मा को। नमस्कार। मीडियम वेव 215.05 मीटर पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

दोस्ती फिल्म का गीत था ये, स्वर मोहम्मद रफी का था। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर की ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं।

सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। एफएम पर आप हमें सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल

0: विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक

0: राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
1: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फॉरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीख।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश

0: का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2 to 3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor Arun Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। सौरभ कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता, गृह विज्ञान विषय में रोजगार के अवसर। वार्ताकार हैं श्री शशि व्यास।
1: शिक्षा की वह विद्या जिसके अंतर्गत पाकशास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वह है गृह प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सफाई, सजावट आदि से संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य रक्षा, उपहार एवं पोषण विज्ञान, बैक्टीरिया विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा एवं परिचर्चा, मातृकला एवं शिशु कल्याण, बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, ग्रह गणित, प्रसार शिक्षा आदि। वर्तमान में ग्रह विज्ञान विषय की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आज लड़कियों के साथ लड़के भी इस विषय को लेकर अध्ययन करने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इसका कारण इस विषय में बहुत अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होना है। गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप कई क्षेत्रों में

विभिन्न जॉब प्रोफाइल पर रहकर कार्य कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से इंटीरियर डेकोरेट, ड्रेस डिजाइनर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशियन, महिला बाल विकास अधिकारी, टीचर, टीवी या रेडियो कलाकार, प्रसार कार्यकर्ता, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एवं मैनेजर मुख्य है। इसके अलावा रोजगार भी आरंभ कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर कई तरह की रिक्तियां प्रकाशित की जाती है, जिसमें सिर्फ गृह विज्ञान के छात्र छात्रा ही आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग भी रिक्तियां प्रकाशित करता है, जिसमें आवेदन के लिए गृह विज्ञान की किसी भी शाखा में बैचलर व मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कई क्षेत्रों में आप रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे किसी खाद्य उद्योग में कैंटीन, रेस्तरां या होटल आदि में कुक या निरीक्षक के रूप में, होटल या अस्पताल आदि में आहार विशेषज्ञ के रूप में, स्कूल कॉलेज में शिक्षक के रूप में, पैटर्न मास्टर, रंगदे दर्जी और कढ़ाई करने वाले के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, हेल्थ केयर एंड हाइजीन आदि क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। गृह विज्ञान में आप कैरियर के चार क्षेत्रों का अध्ययन कर सकते हैं, फूड एवं न्यूट्रिशन, कैथोलिंग एंड टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट तथा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करके आप इन्हीं क्षेत्रों में नियोजित हो सकते हैं। गृह विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद आप घर पर भी कोई लघु उद्योग खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज होम साइंस में शामिल कई विषय इसे खास बनाते हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी, रूल्स डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट के चलते आप इन क्षेत्र का दायरा काफी बढ़ गया है। आप होम साइंस से ग्रेजुएशन है तो संस्थान प्रबंधन, ऊर्जा स्वास्थ्य, शिक्षा प्रबंधन जैसे सेक्टर्स में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक युवा 10.2 स्तर पर इसका चयन विषय के रूप में कर सकते हैं। ज्यादातर कोर्स अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के होते हैं। इसमें डिप्लोमा डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्टर स्तर तक शिक्षा ली जा सकती है। डिग्री लेवल कोर्स में दाखिले के लिए 10.2 स्तर पर साइंस सब्जेक्ट होना भी जरूरी है। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश के लिए छात्र के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। होम साइंस में बैचलर डिग्री वाले को वरीयता दी जाती है। महत्वपूर्ण यह है कि आज इस क्षेत्र में बड़े मौके की वजह से गृह विज्ञान की कई दूसरी शाखाओं में भी स्पेसिफिक कोर्सेज करने की सुविधा है। आप चाहे तो अपनी रुचि के अनुरूप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एक आदर्श कैरियर गृह विज्ञान का कैरियर आज की प्रगतिशील व आधुनिक ख्यालों वाली महिलाओं के लिए आदर्श कैरियर है, जिसके पास सौंदर्य बोध है, समकालीन कला की समझ है और आधुनिक हाउसकीपिंग को लेकर जिज्ञासा है। कोई भी गृह विज्ञान के 5 अंगों खाद्य एवं पोषण, संस्थान प्रबंधन, मानव विकास, वस्त्र विज्ञान और संचार में से किसी में भी विशेषज्ञता हासिल कर सकता है या सबकी सामान्य समझ को हासिल कर सकता है। गृह विज्ञान की पढ़ाई करने वाले को न्यूनतम 15,000 से 20,000 रुपए की नौकरी मिल सकती है। सारा दामोदरार अभ्यर्थी की व्यक्तिगत दक्षता पर होता है कि वह खुद को किस तरह पेश कर सकता है। अनुभव के साथ साथ वेतन में भी बढ़ोतरी होती है। होम साइंस की फील्ड से रिलेटिव अट्रैक्टिव कैरियर ऑप्शन है। इस प्रोफेशन के लिए इंटीरियर डिजाइनर में बैचलर डिग्री प्राप्त करने के बाद स्टूडेंट को नेशनल काउंसलिंग फॉर इंटीरियर डिजाइनर क्वालिफिकेशन एग्जाम पास करना होता है और लाइसेंस इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए इस फील्ड में कम से कम 2 साल का वक्त होना चाहिए। गृह विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कर रखा है तो रिसर्च के क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं और साथ ही यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपने गृह विज्ञान में पीएचडी कर रखा है तो किसी स्कूल में 9th-10th क्लास की टीचर बन सकते हैं और बीएड कर रखा है तो नर्सरी टीचर बन सकते हैं। इसके साथ ही आप क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आहार विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम आहार की में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पास करना होगा और साथ ही इंटर्नशिप करनी होगी, जिससे आप पंजीकृत आहार विशेषज्ञ के योग्य है हो सके। इसके पास जीवन विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी, खाद्य प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी में बीएससी की डिग्री है। वे इस क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर पर प्रवेश पा सकते हैं। खाद्य विज्ञान और पोषण अथवा आहारिकी में एमएससी किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करती है और ऐसे व्यक्ति को कई स्थानों पर नौकरी में वरीयता दी जाती है। अस्पतालों, कल्याण केंद्रों, जिम स्विमिंग क्लिनिक

0: में आहार विशेषज्ञ और सलाहकार के रूप में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में चिकित्सकीय शोध संस्थानों और पोषण शोध प्रयोगशालाओं में चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ और पूरकों का उत्पादन करने वाली कंपनियों में सलाहकार के रूप में अस्पतालों में भोजन सेवा प्रदाता प्रबंधक के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। भोजन सेवा प्रेक्षक अल्पाहार घर प्रबंधन भोजन प्रबंधन उत्पादन प्रबंधक क्रय प्रबंधक भोजन सेवा निदेशक और सहायक भोजन सेवा निदेशक इसके अतिरिक्त स्वतंत्र रेस्टोरेंट कंपनी रेस्टोरेंट में विशेषाधिकार रेस्टोरेंट शिक्षण संस्थानों में प्रबंधित सेवाओं स्वास्थ्य देखभाल उद्योग जैसे अस्पताल उद्योग कैंटीनों रेंत्रा संबंधी परिवहन निकायों में भोजन प्रबंध सेवाओं जैसे वायुयान रेलगाड़ी समुद्र विहार के जलयान आदि में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति पाक कला में कुशल है या पाक कार्यपालक कुशल व कार्यपालक रसोईया सहायक रसोईया राहत कार्य रसोईया क्षेत्र विशेष रसोईया के रूप में कार्य कर सकते हैं। जिन्होंने पाक कला में उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह भव्य 7 सितारा प्रतिष्ठानों में कार्य कर महीने के 40-50 से 1000 महीना कमा सकते हैं। यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय उद्योग है जो प्रशिक्षित लोगों को कुछ समय या अपनी पूरी जीविका के लिए विदेशों में काम करने के अवसर उपलब्ध कराता है। सामान्यतः धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम लघु अवधि के कार्यक्रम होते हैं जो अनुशिक्षण रोजगार प्राप्ति सहायता व्यापार आरंभ करने हेतु सहायता उच्च विशेषज्ञता वाले धुलाईगर में प्रति के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण विमान कंपनी जलयान रेलवे होटलों और उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पतालों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। परंतु प्रत्येक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती है, अतः एक व्यवहारिक प्रशिक्षण अथवा इंटर्नशिप की आवश्यकता पड़ सकती है। वस्त्र विज्ञान वस्त्र रसायन वस्त्र और परिधान में शैक्षिक योग्यता अत्यधिक उपयोगी होगी। पूरे देश में गृह विज्ञान विषय वाले बहुत से संस्थान स्नातक डिग्री के लिए विशेषतः रूप से ये पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। अनेक विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय गैर सरकारी कॉलेज तथा अन्य संस्थान द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन के डिग्री तथा डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रत्याचार द्वारा भी मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपने मानव संसाधन प्रबंधन का कोर्स कर रखा है तो प्रतिष्ठित रोजगार सहायक परामर्श संस्था या भर्ती एजेंसियां भी आपकी सेवा भाड़े पर ले सकती है। आपने मानव संसाधन प्रबंधन में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त कर ली है तो आप किसी भी संस्था में मानव संसाधन या संगठनात्मक व्यवहार पढ़ाने की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। जीविका की तैयारी करने वाले व्यक्ति को इस विषय में स्नातक पूर्व उपाधि होना आवश्यक है। शिक्षा पूर्ण करने के बाद इस क्षेत्र में आना हो तो 1 वर्ष का डिप्लोमा तथा मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का विकल्प भी है। नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण एक अन्य ऐसा पाठ्यक्रम है जो यदि आप उच्चतर शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं तो आप प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में स्नातकोत्तर अथवा डिग्री के लिए पंजीकृत करवा सकते हैं अथवा इस क्षेत्र में PhD कर सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में गृह विज्ञान संकाय के अंतर्गत वस्त्र और परिधान विज्ञान विभाग वस्त्र निर्माण और पोशाक विभाग वस्त्र निर्माण विज्ञान और परिधान डिजाइन विभाग वस्त्र संरक्षक से संबंधित पाठ्यक्रमों के स्नातकोत्तर कार्यक्रम कर सकते हैं। इसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक वस्त्र निर्माण परलेखन और संरक्षण का अध्ययन सम्मिलित है जो विद्यार्थियों को समुचित रूप से संग्रहालयों में विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए तैयार करता है। खाद्य प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता प्राप्त कर आप विभिन्न पेय पदार्थों डेयरी उत्पाद मांस मुर्गी पालन समुद्री खाद्य वसा और तेल स्थायी परिरक्षक स्थायी रंग अनाज योजक पदार्थ में कुशलता प्राप्त कर इन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आप खाद्य परीक्षण और संस्थान तथा खाद्य प्रबंध संस्थानों के लघु उद्योग विभागों में रोजगार प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। भारत और विदेश के अनेक विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा देते हैं। आतिथ्य प्रबंधन में भी यह प्रबंधन वर्तमान में यह व्यवसाय भी बहुत अधिक तेज गति से बढ़ रहा है। ये पाठ्यक्रम कई संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। अभ्यर्थी स्नातक स्तर के साथ साथ स्नातकोत्तर स्तर पर खान पान के कोर्स कर सकते हैं। इसके डिग्री पाठ्यक्रमों के अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आंतरिक व बाह्य डिजाइनर का कोर्स भी आज कई अधिक मात्रा में प्रचलित है। आप इसमें भी अपने रोजगार के अवसर आगे प्राप्त कर सकते हैं।
1: सौरभ कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गृह विज्ञान विषय में रोजगार के अवसर। वार्तक थे श्री शशि व्यास। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

श्रोताओं, हम आपको बता दें 11 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम। और 12 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी कहानी का नाट्य रूपांतर इज्जत। लेखक होंगे श्री मदन सैनी और नाटक रूपांतरकर्ता होंगे श्री प्रमोद कुमार शर्मा। संध्या 6 बजकर 5 मिनट पर एक ही गीतकार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम पर 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार तरंग सुनेंगे, जिसे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के अंक में मैं माधुरी वशिष्ठ और मैं रितिका गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत हैं सप्ताह भर की सुर्खियां।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोटा क्षेत्र के लिए अनेक नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा की।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया।
1: विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत।
0: पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कहा, प्रदेश में गंभीर अपराधों में 4% से अधिक की कमी आई है।
1: जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को GI टैग मिला।
0: भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमियों का आना जारी है।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की गुणवत्ता, एक्सप्रेस वे की सुरक्षा व्यवस्था और यात्री

0: सुविधाओं की जमीनी स्थिति जानी। उन्होंने कोटा में आयोजित कार्यक्रम में कोटा क्षेत्र के लिए अनेक नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से मुकुंदरा वन्यजीव अभयारण्य को बाईपास करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक संपर्क मार्ग और कोटा को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीन फील्ड संपर्क मार्ग भी बनाया जाना शामिल है। श्री गडकरी ने बताया कि कोटा से इटावा तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल एक्सप्रेसवे होगा। कोटा में आयोजित कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास का आधार बनेगा।
1: ये हाईवे केवल जाने आने के लिए नहीं है, ये जहां जहां से जाता है वहां के पिछड़े हुए जनता को विकास का मार्ग दिखाने वाला हाईवे है। इस हाईवे के कारण इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक पार्क आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगी, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, किसानों के माल फसल के आधार पर आधारित उद्योग आएंगे और यहाँ का चौफेर

0: जहाँ से जाता है वहाँ के पिछड़े हुए जनता को विकास का मार्ग दिखाने वाला हाईवे है। इस हाईवे के कारण इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक पार्क आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगी, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, किसानों के माल फसल के आधार पर आधारित उद्योग आएंगे और यहाँ का चौफेर विकास होगा। यही हाईवे बनाने के पीछे हमारे सरकार की इच्छा है।
1: इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे।
2: देश में सहकारिता के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है और समृद्धि का रास्ता खुला है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम से जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसमें 64 एकड़ जमीन पर सहकार वन विकसित किया जाएगा, जिसमें खेजड़ी, रोहिड़ा और नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। राज्य की 42,000 से अधिक सहकारी समितियों से 1,35,00,000 से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। वहीं सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,90,000 से अधिक नए सदस्य जोड़े गए हैं।
3: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
1: सिरोही जिले के आबूराज के ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर आयोजित किया गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शिविर में मंथन के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार को तेज करेगा।
4: माउंट आबू घोषणा का जो अर्थ है कि हम सुधार की रफ्तार को और तेज करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किसी कारण से लीगल पेच के कारण फंसे हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उनमें जो हमारे अटॉर्नी जनरल है या हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल है, उनको भी हम ये जो हमारा माउंट आबू का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में वहां जाकर के दिल्ली में जिक्र करेंगे, ताकि इस घोषणा पत्र के अनुसार हमारी जो लीगल कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे भारत को विकसित भारत बनने में मदद मिलेगी।
2: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। कृषि उपज मंडी परिसर में हुए समारोह में श्री शर्मा ने 1,258 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाने का लगातार प्रयास कर रही है।
3: लगातार कितनी कितनी बड़ी योजना आ रही है। आप देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन फेज टू के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे जिनमें आवश्यकता है, उसमें रिंग रोड बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से कितने रेलवे स्टेशन हमने बनाए, आप हमारे एयरपोर्ट को देखेंगे, आप देखिए कितना विकास राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो रहा है।
1: विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इनके माध्यम से माँ और बच्चे के कल्याण के लिए 2 संतानों में उचित अंतर रखने और परिवार नियोजन पर जोर दिया जा रहा है। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में राज्य स्तरीय समारोह हुआ। इस अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सचिव गायत्री राठौर ने गर्भवती महिलाओं से नियमित जांच करवाने और समुचित परामर्श लेने का आग्रह किया।
5: हम जनसंख्या स्थायीकरण की ओर आ गए हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जो हमारी जनसंख्या है उसको हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध करा सके, बच्चे के बर्थ से लेकर के वृद्धावस्था तक। महिलाओं को पहले से आजकल हो गया कि इवन प्रेगनेंसी के पहले ही काउंसलिंग होती है, क्योंकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपने देखे है कि सिकल सेल एनीमिया वाला होता है, थैलेसीमिया होता है, तो प्री काउंसलिंग बहुत जरूरी है जिससे कि मदर हेल्दी रहे और उसके बच्चे हेल्दी रहे।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जोधपुर प्रवास के दौरान केलावा खुर्द में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि हमें मानवीय मूल्यों को अपने विचार, व्यवहार और दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आज पूरी दुनिया शांति संतुलन के लिए

0: भारत की ओर आशा से देख रही है ऐसे में हमें सनातन संस्कृति को मार्गदर्शन का आधार रखना चाहिए
1: शुद्ध आत्मा से व्यक्ति भी सोचता है कि मेरा जीवन नैतिक सत्य के मार्ग पर चले करुणा संवेदना मेरे मन विचारों में हो वह आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ हो से ही उसके तन मन स्वस्थ के साथ उसका जीवन नैतिक मूल्यों पर चले सत्य के मार्ग पर चले।
0: पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने जयपुर में प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रदेश में गंभीर अपराधों में 4% से अधिक की कमी आई है। वहीं पेपर लीक, माफिया पर प्रभावी कार्रवाई, नशा तस्करों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त अभियानों ने प्रदेश की पुलिसिंग को नई पहचान दी है। राजस्थान पुलिस अकादमी में हुई प्रेस वार्ता में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में जांच को तेज किया गया है।
2: महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेकर, और उसके आधार पे जहाँ पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे।
0: जयपुर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा आधुनिक बनाने के लिए झालाना में 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये स्टेशन शहर में कचरा संग्रहण और प्रबंधन तथा परिवहन को तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगा।
3: वो टेम्पो यहाँ कर कचरे खाली करेंगे और उसके बाद यहाँ से बड़े वाहन में लदकर वो प्रोसेसिंग प्लांट जाएगा, जिसमें से हमारे यहाँ दहलवास प्लांट में जिस प्रकार हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ जगह गैस उत्पन्न करने का विचार है और कुछ जगह अब एक नई तकनीकी हो रही है कि उस कचरे को भी रिसाइकल करे किसी न किसी प्रकार का कोई उपयोगी सामान निर्मित किया जाए।
0: बीते हफ्ते प्रदेश में मॉनसून की आमद हुई। दक्षिण पूर्वी इलाकों से एंट्री कर मॉनसून बाकी इलाकों तक पहुंचा। मॉनसून की दस्तक के साथ ही मौसम जनित बीमारियों के बढ़ने से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे करौली संवाददाता बाके बिहारी शर्मा ने बताया कि वहां जांच करें, सफाई करें और ढके थीम पर स्वास्थ्य विभाग घर घर पहुंचकर लार्वा सर्वे और जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सतर्क कर रहा है।
4: जिले में जुलाई माह को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाया जा रहा है। जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू नियंत्रण और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पानी की टंकियों, कूलरों, ड्रमों, गमलों, फ्रिज की ट्रे, पुराने टायर और अन्य जला भराव वाले स्थानों की जाँच कर लार्वा नष्ट कर रहे हैं। साथ ही आमजन को स्वच्छता बनाए रखने, पानी जमा नहीं होने देने और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है।
0: जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को GI टैग मिल गया है। केंद्र सरकार की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने ये प्रमाण पत्र जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान को प्रदान किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर की मोजड़ी अपनी पारंपरिक कारीगरी, हाथ से की जाने वाली बारीक कढ़ाई, टिकाऊपन और विशिष्ट डिजाइन के लिए देश विदेश में पहचान रखती है। GI टैग मिलने से स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान और आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
5: करीब 200 वर्ष पुराने जोधपुरी मोजरी उद्योग का घरेलू बाजार वर्तमान में लगभग 100 करोड़ रुपए का है, जबकि करीब 10 करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि GI टैग मिलने के बाद इसका निर्यात बढ़ेगा और अगले 2 साल में कारोबार दुगना हो सकता है। इसे जोधपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों परिवार लाभान्वित होंगे जो PDO से मोजरी निर्माण से जुड़े हुए हैं। GI टैग मिलने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिलेगी। इससे फर्जी उत्पादों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कारीगरों और उत्पादकों को बेहतर कीमत मिलने के साथ ही पारंपरिक कला और शिल्प का सांस्कृतिक संरक्षण भी होगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या

0: में पक्षी प्रेमियों का आना जारी है। हमारे संवाददाता शिव कुमार वशिष्ठ ने बताया कि पक्षियों के आकर्षक समूह पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं।
1: केवलादेव की छिछली पानी की झीलों में समूह में खड़े इन पक्षियों की लंबी गर्दन, गुलाबी चोंच और संतुलित मुद्रा को देखने के लिए प्रकृति प्रेमी उत्साहित रहते हैं, तो वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों सहित पर्यटक भी इनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करने के लिए लालायित होते नजर आते हैं। ये पक्षी विशेष रूप से मुड़ी हुई चोंच की सहायता से छिछली पानी को छानकर शैवाल, छोटे जलीय जीव और लार्वा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
2: जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मोबाइल की लत से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर विशेष शोध करेगा। संस्थान लत से प्रभावित लोगों का चयन कर उनकी दिनचर्या, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का 6 महीने तक अध्ययन करेगा। रोग निदान विभाग के अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि शोध का उद्देश्य मोबाइल की लत से होने वाली समस्याओं के लिए प्रभावी आयुर्वेदिक उपचार विकसित करना है।
3: हमारे जो यूथ है वो भी मोबाइल का प्रति बहुत एडिक्शन ही हो रहा है बहुत से लोगों को, कि वो मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहा, क्योंकि मोबाइल में जो कंटेंट जो है वो बहुत से कंटेंट ऐसे हैं जो उसको नहीं देखने चाहिए। बहुत से हिंसक कंटेंट है, बहुत से वल्गेरिटी बढ़ाने वाले कंटेंट है, तो कंटेंट वाइज उस पर बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक है, उनके पेरेंट्स को, कि बच्चा क्या देख रहा है।
2: श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए, एक अन्य अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रामनाथ मीना।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हमें जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, राज्यों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत। बालोतरा जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने से अधिकतर हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य जल संसाधन क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करना और प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना है। सम्मेलन के दौरान जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, बांध सुरक्षा, जलाशय प्रबंधन, राज्य जल सुधार ढांचे, सिंचाई जनगणना और कैच द रेन अभियान सहित कई प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन भी आज से शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रहे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वे लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सके। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की

0: जाएंगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। जिला स्तर की विजेता राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करेंगी। वहीं राज्य स्तर की विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में आमंत्रित किया जाएगा। माय भारत 5 रचनात्मक श्रेणियों नृत्य, संगीत, रील और लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक और कविता में प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा है कि राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रभावी प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को मातृ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी प्रोटोकॉल की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक मातृ मृत्यु अत्यंत संवेदनशील विषय है और राज्य सरकार हर मामले की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। मंत्री ने बताया कि भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हाल ही में प्रसूताओं की मौत के मामलों की निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत जांच कराई जा रही है। अब तक की जांच में चिकित्सकीय लापरवाही का कोई स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है। श्री खेवसर ने कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या प्रोटोकॉल के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल का कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग 2000 से अधिक मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि ये आधुनिक तकनीक पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी की तुलना में कम दर्द, कम रक्तस्राव, तेजी से स्वस्थ होने और बेहतर परिणाम के लिए जानी जाती है। इस तकनीक से मरीजों को कम समय में अस्पताल से छुट्टी मिलती है और सामान्य जीवन में जल्द वापसी संभव हो पाती है। उन्होंने इसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
1: हमारे हिंदुस्तान में SMS मेडिकल कॉलेज में जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हमने यहाँ पर 32 तरह के ऑपरेशन कर दिए, जबकि सारी दुनिया में 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसमें भी जान पे चीरा लगाया जाता है। हमारे यहाँ हमने 2000 ऑपरेशन कर दिए कुल मिला के मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में, जिसमें हमने 32 तरह के अलग अलग ऑपरेशन किए हैं और हमारे सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं और हमारी सक्सेस रेट करीब 99.5% है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। बालोतरा के पास देर रात हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा भांडियावास के पास हुआ, जहां एक SUV आगे चल रहे डंपर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 घायलों ने जोधपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में घायल 3 लोगों का जोधपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पचपदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए 310 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना पर काम चल रहा है। परियोजना के तहत पुराने कचरे का बायो माइनिंग तकनीक से निस्तारण किया जाएगा और इन स्थानों पर आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी। परियोजना के तहत 152 नगरीय निकायों में लगभग 75 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जीरो डंप साइट के राष्ट्रीय लक्ष्य को गति देना है। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में स्वच्छता के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। पाली जिले में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026 के तहत सोजत नगर पालिका द्वारा मुख्य मार्गों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की दीवारों को आकर्षक कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाली संवाददाता।
2: राजस्थानी संस्कृति के तहत ऊंट, मांडना, हिरन और विभिन्न वन्य जीवों की कलाकृतियों के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। पेड़ पौधों और हरियाली की पेंटिंग से आमजन को पौधरोपण के प्रेरित कर रही है। वहीं दीवारों पर गीला कचरा, हरे डब्बे में सूखा कचरा, नीले डब्बे में जैसे चित्रों के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और खुले में कचरा नहीं फैलाने

0: का संदेश दे रही है। साथ ही अब यह पेंटिंग्स आकर्षक सेल्फी पॉइंट बन रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-2025, 2025-2026 और 2026-2027 के लिए पदोन्नति हेतु आवश्यक अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। श्री शर्मा कल जयपुर में सचिवालय सेवा अधिकारी और सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ गया है, इससे अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने और बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि आगामी 2 दिनों तक बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी अगले 5 से 6 दिन अधिकांश स्थानों पर मॉनसून कमजोर रहने के आसार हैं। जयपुर, भरतपुर और शेखावटी क्षेत्र में आज से 15 जुलाई के दौरान कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलौदी में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत। बालोतरा जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से अधिकतर हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लोक संगीत में आइए सुनते हैं ज्ञानेश्वरी शर्मा के गाए लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायत्री सोलंकी के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है, यह सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका

0: सामान्यतः उपयोग कहां होता है। साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
1: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है। यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
1: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
1: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अश्रोताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है। कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: अरे भागो भागो, वो देखो
3: हमारे पशु पक्षी को क्या हो गया, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
2: अरे हो गई है क्या, हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
4: सारी फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है।

0: जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे काट काट काट, मेरा भाई क्या देख रहा है, काट।
4: अरे मैंने आज मैं पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की। लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
5: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
3: अरे काट काट काट। हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते,
2: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़

0: घटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
1: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
2: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
3: क्या? हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
2: फसल बह गई।
1: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
2: सारा सामान
1: जल्दी से ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर।
1: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
2: चलो चलो।
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
2: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
4: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे।

घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए, मैं ही बसंत और

0: में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं,
1: मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी,
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है?
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
5: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ, छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ,
5: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
5: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा।
6: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ गए।
5: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
6: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
2: हाँ, चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल

0: आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख कोला। अरे हाँ वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
0: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
0: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज ही ना सुन ले।
1: अच्छा
0: चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो
2: खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
1: राम,
2: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
0: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए।
2: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
0: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
3: मगर कैसे, भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है, और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
0: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा रहेगा।
4: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा।
0: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना। हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
0: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: बचाएंगी,
0: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है, अरे बाहर निकलो। चाची
5: क्या बात है,
0: जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
1: क्या जंगल,
0: जल्दी आओ,
1: हमारे जंगल काट रहे हैं।
4: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
0: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
6: बिल्कुल
0: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति दे।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज

0: तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
1: अरे भाभियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़ कर पैरों से अलग कर दो। अरे बोला ए जवान, देखो कि बोला आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो,
0: आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो।
2: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
3: चिब्बू भाग ले यहां से,
4: भाग ले के बाद में मां दादी काटने के।
2: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
5: वाह भैया, गौरा ने तो भी बहुत कमाल का काम कर दिया।
6: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही
2: दोस्तों। इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को
2: कुसुम लता,
7: जगबंधु,
2: चेतना
7: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजे हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
2: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: I know na।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

घिरा गम का अंधेरा, उसने किया जियाला। जब भी घिरा

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।
1: रामचंद्र परवाह नहीं।

0: प्रति रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

लता मंगेशकर की गाय फिल्म आरती के गीत के साथ ही फिल्म संगीत नई फिल्मों से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मिलन वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। पेश है भूले बिसरे गीत।

कार्यक्रम में पहले सुनिए। हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म गंगा जमुना का ये गीत को लिखा है शकील बदायूं ने और संगीत नौशाद का।

फिल्म आप सुनिए। उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है निदा फाजली ने, गीत को गाया है हेमलता ने और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

रवि के संगीत निर्देशन में। गीत को लिखा था शाहिर लुधियानवी ने, गीत को गाया था लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम था काजल। फिल्मी भजन आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। भजन को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और गीत गाया है मोहम्मद रफी ने और फिल्म का नाम है दोस्ती।

प्रदीप की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म थी दो बहनें। कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दो बीघा जमीन का ये गीत।

0: मनाडे के गाए फिल्म चिंगारी के गीत के साथ ही फिल्मी भजन का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारो चैनल है। दिन के 12 बजने को है। अब आप आकाशवाणी
1: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज

0: जहाज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है, जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी सभा में दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे हिंदी कहानी का नाट्य रूपांतरण कहानी इज्जत। लेखक होंगे श्री मदन सैनी और नाट्य रूपांतरकर्ता होंगे श्री प्रमोद कुमार शर्मा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर।

वहीं पुष्कर 5 मिनट पर बने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे पारंपरिक सांस्कृतिक विरासतों को सहेजती महिलाएं, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, प्रभाव और उपाय, बच्चों के मानसिक विकास के लिए कहानी सुनाने की परंपरा। साथ ही आप सुनेंगे एक वार्ता महिला संस्कृतिकरण एवं पंचायतीकरण। वार्ताकार होंगी डॉक्टर अरुणा भारद्वाज।

हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा जीवन जीना एक कला है। साथ ही लघु जानकारी के विषय रहेंगे मोती झील भरतपुर, सुकून की तलाश भी जरूरी है लक्षद्वीप और राजस्थान के लोक नृत्य। आखिर में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज टाइम। फिल्म संगीत सुनेगा संध्या 6:05 पर और आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे संध्या 6:40 पर। ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण होगा संध्या 7:00। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्य, कैश द रेन अभियान और किसान क्रेडिट कार्ड, वर्षा काल में बेहतर पशु प्रबंधन और आखिर में आप सुनेंगे मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य।

बात है। 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और रात्रि 8:30 पर होगा लोक संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी जयपुर के आमिर जंगल से रात्रि 10:00 आप सुनेंगे खेल जगत।

ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मरु चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। इस वक्त दिन के 12:10 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है हिंदी कहानी का नाट्य रूपांतर इज्जत। कहानी के लेखक हैं श्री मदन सैनी और नाट्य रूपांतरकर्ता हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा।

0: मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता, कुत्ते से भी गया गुजरा, इसलिए अपना गया गुजरापन याद करके कभी कभी रो लेता हूँ। हंस लेता हूँ, कह लेता हूँ, सुन लेता हूँ। वैसे कहने और सुनने के सिवाय अब बचा भी क्या है? वो देखो, वो तिली माँ क्या करी दीवारों से, कब से कह रही, कहीं जा रही है, कोई नहीं सुनने वाला, कहीं जा रही है।
1: बच्चे कैसे पैदा होते हैं, होते हैं तब कैसा लगता है, काश काश एक बच्चा हमारे भी हो जाता तो जिंदगी का धोखा नहीं रहता।
0: हाँ देव, ये दिन भी देखने थे।
1: एजी, कहते हैं ना औलाद के बिना मोक्ष नहीं मिलता, इसीलिए आप दूसरा विवाह कर लें।
0: दूसरा विवाह? पर क्या पता मुझ में कोई कमी हो?
1: नहीं जी, नहीं, आप में कोई कमी नहीं, मैं औरत ही अधूरी हूँ। मेरी सहेलियां भी कहा करती थी मैं बंजर जमीन हूँ, मैं बंजर जमीन हूँ। कहने को तो मैं भी अपना और आपका चेकअप करवा सकती थी, लेकिन जगत में उपहास होगा, इसीलिए कहती हूँ दूसरा विवाह कर लीजिए। मेरा मन कहता है आप जरूर पिता बनेंगे।
0: पिता? पिता तो मैं बनना चाहता हूँ, मुझे मुझे मेरे पिता बहुत अच्छे लगते थे, मैं यकीनन पिता बनना चाहूंगा। पिता होना वरदान है, मैं इसे ग्रहण करूंगा, अपने अपने पौरुष को परखूंगा। हाँ हाँ तिलिमा, तुम्हारे कहने पर दूसरा विवाह करूंगा। हाँ तिलिमा, दूसरा

0: सो गए क्या?
1: ओ, नहीं तो क्या, आप तो अपने मोबाइल पर चैट कर रही थी।
0: ओह, यू नो सुहाग रात थी ना, इसलिए मेरे तमाम दोस्त एक्साइटेड थे, उनको जवाब दे रही थी।
1: भाई हमें जवाब कब देंगी?
0: हुजूर सवाल तो करें।
1: ओह बहुत खूब, जवाब देने में तो आप माहिर लगती हैं। तीली माँ तो आपके सामने गूंगी लगती हैं।
0: सुनो जी, मेरे सामने तीली माँ दीदी की बात मत करना, वो बेचारी है। खैर आपके सवाल खत्म हो गए क्या?
1: सवाल
2: राकेश, राकेश क्या कर रहे हो भाई?
3: नहा कर हटा हूँ भाई साहब, अधो वस्त्र धो रहा हूँ।
1: धो वस्त्र काम बहुत करते हो तुम, मेरा भी एक काम कर दो।
3: अरे भाई साहब एक क्यों, दो कहो ना।
1: नहीं बस एक ही, वो क्या है कि मालती की हार्दिक इच्छा है कि नर्मदा का भाई राकेश यानी तुम उसे अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ाओ।
4: वाह मालती वाह, क्या अप्रोच है तुम्हारी। शादी में सिर्फ एक नजर की गुफ्तगू हुई थी और तुमने मिलने का रास्ता भी बना लिया। क्या कहने मालती, क्या कहने, मैं कुर्बान हूं पर हजार जान कुर्बान।
1: क्या क्या सोचने लगे राकेश?
4: कुछ नहीं, आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है, मैं कल ही से मालती भाभी को ट्यूशन पढ़ाना आरंभ कर देता हूं। आप निश्चिंत रहें, 2-3 माह में ही उसे अंग्रेजी में निष्णात कर दूंगा, आप देखते रह जाओगे। हाँ
0: सुनते हो जी?
1: अरे नहीं सुनूंगा तो कहां जाऊंगा। मालती तो राकेश के साथ पढ़ रही लगती, वरना कुछ देर उससे ही मन लगा लेता।
4: मालती
0: अरे राकेश यही मैं कह रही हूं, मुझे इस पढ़ाई में कुछ और ही दिख रहा है।
1: ओ तेरी माँ,
0: गुस्सा मत करो जी, धान खाती हूँ मैं, मुझे तो मालती के लक्षण ठीक ना लगे हैं। ये मुआ राकेश तो वक्त बेवक्त कभी भी आ जाता है, फिर दोनों कमरा बंद करके हंसी ठिठोली करते रहते हैं।
1: ओहो वहम है तुम्हें, मालती ऐसी औरत नहीं है, आखिर नर्मदा का भाई है राकेश, रिश्तों की कोई तो कदर करेगा, कुछ तो सोच।
0: नर्मदा का भाई, नर्मदा का भाई, नर्मदा का भाई, जैसे नर्मदा का भाई होना चरित्र प्रमाण पत्र ही हो गया। माना कि नर्मदा चरित्रवान विधवा है, लेकिन मालती, ये किसको क्या पता कि मालती क्या चीज है।
1: देखा देखा, तुम स्त्रीचित जलन का शिकार हो रही हो। मैंने पहले ही कहा था मत करवाओ मेरी शादी, तुम्हें तुम्हें जलन हो जाएगी। देखो हो गई ना जलन, हो गई ना।
0: मुझे क्या पड़ी है जलने की, जो जी में आए सो करो, पर जिस काम के लिए शादी की है वो तो करे, तुम्हें बच्चा तो दे, और अगर नहीं दे सकती बच्चा तो अपनी जांच कराए ना, कोई कमी हो तो आप एक शादी और कर लेना।
5: वाह वाह वाह, क्या ज्ञान की घुट्टी पिलाई जा रही है। सुनो जी, कोई कमी हो तो आप एक शादी और कर लेना। हाय हाय, क्यों तुम्हारे दूल्हे राजा में तो कोई कमी ही नहीं है।
0: क्या कह रही हो मालती, वे पूर्ण मर्द हैं, पूर्ण पुरुष, पूर्ण पुरुष।
1: मैं इस हंसी का जवाब दूंगा मालती, मैं कल ही डॉक्टरी जांच करवा कर अपना पक्ष तुम्हारे सामने रखता हूं। हाँ कल ही, बस तुम देखना कल।

0: करवाए चेकअप?
1: करवाया।
0: वैसे तो मैं चेहरा देखकर ही ताड़ गई हूँ कि क्या हुआ होगा, फिर भी पूछ रही हूँ, क्या कहा डॉक्टर ने?
1: यही कि मैं बाप नहीं बन सकता, मुझमें वो काबिलियत ही नहीं है।
0: मुझे तो बवेजा जी पहली रात से ही पता चल गया था कि तुम मर्द नहीं हो।
1: मर्द? मेरे मन पर ये पत्थर फेंकने से पहले काश तुम अपने भीतर भी झांक लेते। तुम औरत होकर भी कहां औरत हो?
0: मेरी तरफ उंगली उठा रहे हो बवेजा साहब? तो सुनो, मैं आजाद ख्याल की औरत हूँ, जानती हूँ कहाँ औरत बोलती है और कहाँ मर्द बोलता है। मुझे पता है माँ होने का सुख और दुख क्या होता है। मैं एक कंप्लीट औरत हूँ बवेजा साहब।
1: नहीं, तुम एक करप्ट औरत हो, ये मैंने सोचा भी नहीं था।
0: What do you mean to say me corrupt? बताती हूँ करप्ट औरत क्या होती है।
1: कहाँ जा रही हूँ सरे शाम?
0: तलाक के लिए वकील के पास। है?
1: तलाक? मालती, इतनी भी क्या जल्दी है, ले लेना तलाक। परंतु मेरे खानदान की इज्जत का तो सोचो, इतने दिन साथ रहे हैं, जरा एक दो दिन और सोच लो, आखिर ये हमारा घरेलू मामला है।
0: घरेलू मामला? माय फुट घरेलू मामला तुम्हारा होगा ये घरेलू मामला। मुझे अब इस सब से कुछ भी लेना देना नहीं। मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ नष्ट नहीं करना चाहती। मुझे मातृत्व का अधिकार चाहिए और इसे मैं लेकर रहूंगी बवेजा जी। कान खोल के सुन लो, यदि राजी वाजी तलाक नहीं दोगे ना, तो मैं तुम्हें कानूनन नामर्द सिद्ध करके तलाक तो लूंगी ही।
1: नहीं, तुम्हें किसी भी कानूनी बंदोबस्त की जरूरत नहीं। नर्मदा के भाई राकेश के साथ मैं तुम्हें नियोग की अनुमति प्रदान करता हूं। बस तुमसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है, बात का बतंग करना मना। मेरे खानदान की जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसका तो ख्याल कर।
0: इज्जत? माय फुट।
2: बहुत देर कर दी ना,
0: चुप चुप कर आई हूं, छुपते छुपते
2: जल्दी ऐसा भी का छुपना
0: जरूरी था। सच्ची कुछ ऐसा है कि जमाने की नजरों से छुपाना होगा।
2: ऐसा क्या?
0: इधर आओ। मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
2: ये तो बहुत खुशी की बात है।
0: वो तो है, मगर एक दिक्कत है।
2: वो क्या?
0: बच्चा तो तुम्हारा ही है, लेकिन बाप का नाम नरेश बवेजा होगा।
2: बाप का नाम नरेश बवेजा? बाप का नाम नरेश बवेजा? नरेश बवेजा? बाप का नाम नरेश बवेजा?
1: राजा बेटा, कितना सुंदर है ये बच्चा, बिल्कुल अंधेरे में जलते दीपक की तरह। थैंक यू भारती, अंततः तुमने मुझे बाप बनने का गौरव दे दिया। सचमुच ये मेरा ही बच्चा है ना?
0: कैसी पागल बात करते हो बवेजा जी, अपनी डॉक्टरी रिपोर्ट याद नहीं तुम्हें?
1: फिर ये बच्चा?
0: नियोग भूल गए क्या?
1: परंतु मैं पांडु नहीं बन पा रहा हूँ।
0: किंतु मुझे कुंती होना पड़ा। ये नर्मदा के भाई राकेश का अंश है।
1: मालती!
0: आवाज धीमी बवेजा साहब, दीवारों की भी कान होते हैं, कहीं आपकी

0: नंदन की इज्जत महाभारत की भेंट न चढ़ जाए।
1: लेकिन लेकिन मालती, मैं महाभारत नहीं चाहता। तुम चुप चुप रहो प्लीज, मेरी खातिर, मेरी मेरी इज्जत की खातिर, मेरे
0: नरेश, नरेश उठो। तुम मुझे उल्टा कहते थे ना, अब अपनी आंखों से देख लो। राकेश के साथ कमरे में बंद है, मैंने ताला लगा रखा है। खोल कर तो देखो ताला, तब पता चलेगा कौन उल्टा है, वो कि मैं। हट कुलबोरे।
1: अरे क्या क्या हुआ, कौन उल्टा, कैसा ताला?
0: आंख खोल कर तो देखो, तिलीमा और राकेश कमरे में बंद हैं। राकेश से तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले अपनी तिलीमा को तो संभाल लो।
1: नहीं, लाओ लाओ चाबी दो। ये क्या, राकेश, तिलीमा, तिलीमा, राकेश, ओ तो प्रोत, ओ नो नो।
2: सॉरी भाई साहब, मैं शर्मिंदा हूँ, पर मैं मजबूर था। मुझे तिलीमा भाभी ने जबरन बुलाया था।
1: तिलीमा, तुम इतनी गिर सकती हो तिलीमा, मैं सोच भी नहीं सकता था। खैर, आज से तुम मेरे लिए गैर हो, चुपचाप इस कमरे में पड़ी रहा करो, तो रोटी मिले तो खा लिया करो। मेरी बला से राकेश को बुलाओ या किसी काले भूत को, मेरे लिए मर गई हो तुम।
3: नरेश, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सुनो तो, सुनो नरेश, सुनो नरेश, सुनो तो, सुनो।

0: नरेश लो, एक जाम और लो।
1: जाम। वैसे एक बात है मालती, जब से तिलिमा गई है ये घर तो बहखाना बन के रह गया। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी।
0: छोड़ो ना राजा, और एक जाम लो उसके नाम पर और लानत भेजो।
2: बरंडाक
3: आया भाई।
2: नरेश बवेजा, किराना गली मकान नंबर 10 बीरम नगर, आपका ही एड्रेस है ना?
1: जी भाई। आप तो यूं पूछ रहे हैं जैसे अबे जानते ही नहीं। अरे हमेशा आप ही तो मेरी डाक देकर जाते हैं।
2: जी वो तो है, मगर ये बैरंग खत है इसलिए पूछ रहा था।
1: अच्छा,
2: आपके नाम पर कोई तिलिमा बवेजा ने गौ घाट से ये बैरंग चिट्ठी भेजी है? कहो तो रसीद बना दूं या वापस भेज दूं?
1: तिलिमा बवेजा? नहीं नहीं, वापस नहीं, रसीद बना दूं।
4: क्या हुआ जी, कौन है?
3: अरे कोई अजनबी नहीं है, डाकिया है।
2: हाँ जी, यहाँ साइन कर दें और 10 रुपए नगद दे दे।
1: ये लो साइन और ये लो 10 रुपए।
2: ये लो डाक।
0: अरे कितनी देर लगा दी, चिट्ठी है या चिट्ठा?
1: अरे चिट्ठा ही समझो, तिलिमा का अंतिम पत्र।
0: तिलिमा, क्या लिखा है?
1: लिखा है,
5: प्राणेश्वर मैं गंगा जैसी पावन होकर भी बदनाम हो गई, इसीलिए गंगा को ही अपना

0: सत्य सौंप रही हूं, तुम्हें पिता ना बना सकी, सदा खुश रहना और मालती का ख्याल रखना। मेरी मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूं, भगवान ने चाहा तो किसी जन्म में अवश्य मिलेंगे तुम्हारी तिलोमा। ओहो, चलो डाइन से छुटकारा मिला, अब ये पूरा घर मेरा, अब हम चैन से रहेंगे।
1: चैन कहाँ मालती, चैन कहाँ? मैं मुन्ना का जायज बाप होकर भी बाप होने का दावा नहीं कर सकता, और ना ही राकेश ना जायज बाप होकर बाप होने का। एक सूनापन संबंधों में सवार होता जा रहा है।
0: शायद तुम्हें ज्यादा हो गई है भवेजा जी।
1: ज्यादा नहीं मालती, ज्यादती हो गई है, तकदीर ने की है ज्यादती मेरे साथ। खानदान की इज्जत के लिए मैं तुम्हारे सामने गूंगा बनकर जीता रहा, मगर तुमने तिलिमा के साथ छल किया, राकेश के साथ मिलकर किया। बेचारी निर्दोष थी, निर्दोष थी बेचारी। अब लगता है कि समय आ गया कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। मैं जा रहा हूं मालती, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, मैं तिलिमा के पास जा रहा हूं।
2: नहीं नहीं नहीं नरेश, ऐसा मत कहो, कुछ तो मेरा और मेरे बच्चे के बारे में सोचो।
1: बच्चा?
2: सुनो सुनो, रुको तो सही।
1: नहीं रुक सकता,
2: तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा भवेजा जी?
1: हम जा दे।
2: सुनो सुनो, नहीं रुके।

0: मेरा नाम रोशन कुमार, SHO बिरमनगर। आप?
1: जी नरेश, नरेश बबीचा।
0: कहाँ जा रहे हैं आप?
1: जी जयपुर।
0: कोई खास काम?
1: ट्रांसफर के लिए।
0: बाय द वे कहाँ ठहरेंगे?
1: मेरी क्वार्टर में, विधायक जी के यहाँ।
0: मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरा भी ट्रांसफर केस है।
1: चलो अच्छा है, विधायक जी अच्छे आदमी हैं, अपने इलाके के लोगों का योगक्षेम वहन करते हैं।
0: सो तो है, लेकिन देख रहा हूँ कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं।
1: कैसे बताऊं कि मेरी पेशानी पर मालती परेशानी बनकर बैठी है या तेरी माँ? मगर मैं इन चक्करों से कहीं दूर निकल जाना चाहता हूँ, यहाँ से कहीं दूर ट्रांसफर करवा लेना चाहता हूँ। कहीं तू
0: क्या सोचने लगे आप?
1: कुछ नहीं, यूं ही हाथ की लकीरों पर दौड़ती तकदीर की ट्रेन के बारे में।
0: ज्यादा नहीं सोचा करते, जैसे आप आदमी जोड़दार हैं।
2: आइए।
0: आप
2: मुझे पहचानते हैं? मैं MLA साहब का दूर का भांजा ईशर, यहाँ केयर टेकर का काम करता हूँ। ये मेरा बालक है।
0: खुश रहे बच्चा।
2: वैसे आप लोग हाथ मुंह धो लो, है ना। लाइए मैं आपका सामान रख देता हूँ। हाँ, अब आप आराम करें, ठीक है ना।
0: सामान?
2: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इधर रख देता हूँ कमरे में, ठीक है ना। फिर मैं सोडा ला जाकर आता हूँ।
1: मेरे सामान से रुपए गायब हैं, कहाँ गए? लगता है किसी ने निकाल लिए।
0: मगर यहाँ कौन? मेरे, तुम्हारे और ईशर के सिवा एक बच्चा ही तो।

0: हाँ, मगर जब ईसर हमारा सामान कमरे में लगा रहा था तो शायद।
1: चलो उसके कमरे की तलाशी लेते हैं।
0: जी ठीक है। ये फाइल, इसमें तो कुछ कागज पत्र है। ये ये ये संदूक है। ओह, इसमें तो कपड़े लगते हैं। और ये ब्रीफ केस। अरे वाह, ये रहे मेरे 5,000 रुपए।
1: क्या 5,000 रुपए गुम हुए थे आपके?
0: जी जी जी जी जी जी 5,000 रुपए।
1: फिर ठीक है, रख लो, उसके आने पर बात करेंगे।
0: ठीक है, आप करना बात। मैं तो उनके आने तक मिलूंगा नहीं।
2: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, पढ़िए ईसरदास का बयान, कैसे की नरेश बवेजा ने आत्महत्या। आज की ताजा खबर।
3: नरेश बवेजा? ओ भाई, नरेश बवेजा की आत्महत्या? भाई एक अखबार देना।
2: लो बहन जी, लाइए 2 रुपए।
3: ये लो लो, जल्दी लाओ, देखूं क्या लिखा है खबर में। लिखा है मेरा नाम
4: ईसर है, मैं विधायक जी का केयर टेकर हूँ। उस रोज जब मैं MLA क्वार्टर वापस लौटा तो मेरे बेटे ने बताया कि कल आए दोनों लोगों ने मेरे कमरे की तलाशी ली। मैं चकराया, तुरंत कमरा संभाला, ब्रीफ केस के रजिस्टर में रखे बैंक पासबुक में रखे हुए 5,000 रुपये नहीं मिले। मैं दौड़कर दोनों कमरों में गया, वहीं SHO मिला। वह बीमार सा दूसरा आदमी जा चुका था। मैंने SHO को खूब डांटा और रजिस्टर में दर्ज उस बीमार आदमी का पता तलाशा और दबिश देने बिरम नगर आ पहुंचा। उसके दफ्तर में पता किया तो वह जा चुका था। मैंने उसके सहकर्मियों को बताया कि मैं जयपुर से आया हूं और मुझे शक है कि उसी ने मेरे रुपए मारे हैं। लेकिन वो अगले रोज भी दफ्तर नहीं आया, तो मैंने उसके सहकर्मियों के साथ उसके घर, सिनेमा घर, पुस्तकालय, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आदि तमाम संभावित जगह छान मारी, पर वो नहीं मिला। अगली सुबह जब मैं थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया तो SHO साहब ने बताया कि वो तो आज सुबह ही जयपुर एक्सप्रेस के आगे कूद कर मर गया। उसने आखिरी खत में लिखा कि मैं अपनी मौत का जिम्मेदार खुद हूं, मैं कुत्ता हूं, कुत्ते से भी गया गुजरा, मुझे अफसोस है मैं अपने खानदान की इज्जत न बचा सका और दुर्दिन का मारा ईसर के 5,000 भी चुरा बैठा। उस भाई साहब के पैसे लौटा दिए जाए और मेरी नौकरी की जगह बाल्टी को नौकरी दे दी जाए। मेरी आत्महत्या आत्महत्या नहीं, बलिदान समझी जाए, बलिदान।
5: अर्जुन है तू
3: कायर नामर्द, ये क्या किया तूने? झूठी इज्जत के लिए जान गवा बैठा। अरे पागल, ये समाज औरत को इज्जत नहीं दे सकता, ये समाज औरत को इज्जत नहीं दे सकता, ये नंगा समाज है, नंगा। ओह नरेश, तुम इतनी सी बात नहीं समझ सके, अब मैं ये तुम्हारे नाम की चोरियां

अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी का नाट्य रूपांतर इज्जत। कहानी के लेखक थे श्री मदन सैनी और नाट्य रूपांतरकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार शर्मा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:40 हुए हैं। नीचे सुनिए फिल्म भजन।

घिरा गम का अंधेरा उसने किया जियाला जब भी घिरा

नागिन फिल्म का ये भजन अभी आपने सुना। गीत भजन को गाया था हेमंत कुमार और साथियों ने। निजी मनाडे के सुर में सुनिए फिल्म सीमा का ये भजन।

0: काटे और असरानी के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म बावर्ची फिल्म का ये फिल्मी भजन। इसी के साथ फिल्मी भजन का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आज जयपुर में ऋण पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि ऋणों की रीप्राइसिंग से डिस्कॉम्स को हर साल ब्याज पर उल्लेखनीय बचत हो रही है। बैठक में बताया गया कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

0: आवर्स में महंगी बिजली की खरीद पर निर्भरता कम होगी और बिजली आपूर्ति अधिक विश्वसनीय बनेगी। मुख्य सचिव ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज टू और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वांगीण विकास प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करता है और इससे राष्ट्र की प्रगति को नई गति मिलती है। आज सोशल मीडिया पर संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश इस प्रेरणादायक भावना के साथ भारत की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करना, युवा पीढ़ी की रक्षा और पोषण करना और राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, समृद्धि तथा सुशासन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का निरंतर कर्तव्य है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को मजबूत करना है, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले नैतिक और इनोवेटिव अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य परिणामों और समानता में सुधार के लिए राष्ट्रीय और उभरती स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया है। वे आज नई दिल्ली में जल बजट और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी के साझा प्रयासों से ही सार्थक परिवर्तन संभव है। श्री भारद्वाज ने बताया कि मंत्रालय पिछले डेढ़ साल से इस पहल पर काम कर रहा है। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी करने और अपने अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 की पहली ट्रेन आज दोपहर बाद जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत हरी झंडी दिखाएंगे। इस उपलक्ष में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित होगा। श्री कुमावत वरिष्ठ जन से मुलाकात भी करेंगे। जैसलमेर जिले में हरियाली राजस्थान अभियान के तहत इस साल करीब 47 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वन विभाग ने अपनी नर्सरियों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार कर लिए हैं। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: जिले का सबसे बड़ा टारगेट वन विभाग का है। वन विभाग को इस बार 32.53 लाख पौधे लगाने हैं। कुल 34 विभागों को 44.95 लाख पौधे लगाने हैं। जिले के सभी नर्सरियों में जितन के लिए 17.62 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 32 लाख पौधे अलग से तैयार हैं। इन्हें वन विभाग स्वयं लगाएगा। उपवन संरक्षक कुमार शुभम ने सभी विभागों से अपील की है कि ये अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पौधे ले जाएं और पौधरोपण सुनिश्चित करें। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: सवाईमाधोपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायतों में वन मित्र बनाए जाएंगे। ये वन मित्र पंचायतों की बंजर, चारागाह और सिवाय चक भूमि पर लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे, साथ ही वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे। जिला प्रशासन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य हरियाली बढ़ाने के साथ ही स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है। एचपीवी टीकाकरण अभियान में बारा जिले ने एक ही दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले में शुक्रवार को एक ही दिन में 247 किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम लेकर आई है माधुरी शर्मा और कोमल पुरोहित।

0: सुनने वाली सभी बहनों को माधुरी शर्मा और मेरे साथ हैं
1: कोमल पुरोहित का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: माधुरी जी, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी बस एक तय रफ्तार में चल रही है? सुबह उठो, वही घर के काम, वही ऑफिस, वही जिम्मेदारियां। शाम होते होते लगता है कि पूरा दिन तो निकल गया लेकिन अपने लिए एक पल भी नहीं मिला।
0: क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है और धीरे धीरे ये रोज का क्रम इतना सामान्य हो जाता है कि मन करने लगता है कि बस अब कुछ और नया नहीं बचा। जबकि सच तो यह है कि जिंदगी नहीं, हमारी दिनचर्या एक जैसी हो जाती है, तब हमें ऐसा लगता है ना कोमल?
1: बिल्कुल सही कहा आपने माधुरी। कई बार हम सोचते हैं कि शायद हमें किसी बड़ी छुट्टी, नई जगह या बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, लेकिन क्या सचमुच जो है खुशी सिर्फ इन्हीं चीजों में छिपी होती है?
0: नहीं, कई बार बदलाव बाहर नहीं, अपने सोचने के, जीने के तरीके में लाना पड़ता है। छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी पड़ती है कोमल, जो हमारी भाग दौड़ में कहीं पीछे छूट जाती है ना?
1: बिल्कुल, कभी अपने पुराने शौक को फिर से अपनाना, कभी परिवार के साथ बिना मोबाइल के बैठकर बातें करना, कभी सूर्योदय देखना, कोई नई किताब पढ़ना या बस खुद के लिए आधा घंटा निकाल लेना। ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी जीवन में नई ताजगी भर सकती है।
0: यानी जिंदगी में रंग भरने के लिए हमेशा बड़े बदलाव की नहीं बल्कि छोटे छोटे नई शुरुआत ही काफी होती है। जाइए जरा बगीचे में, देखिए ना आपने पौधों को पानी कब दिया, उनकी पत्तियां छांट लीजिए और नया आकार दे दीजिए अपने गार्डन को या अपने घर के ड्राइंग रूम को। फिर देखिए जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं होता, बदलाव हमें अपने भीतर लाना होता है ना?
1: शायद जिंदगी बदलने से पहले हमें अपने जीने का अंदाज बदलने की जरूरत होती है और जब नजरिया बदलता है तो वही जिंदगी जो कल तक बोझ लग रही थी फिर से खूबसूरत लगने लगती है।
0: हाँ, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे ईश्वर की हम पर मेहरबानियां बनी रहे, है ना? और ईश्वर तभी मेहरबान होता है जब हम उसे बड़े शिद्दत से पुकारते हैं, है ना?

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़, जन जन तक।
4: माधुरी, कल मैं अपनी दादी के साथ बैठे थे, अचानक उन्होंने एक पुराना सा लोक गीत गुनगुनाना जो है वो शुरू किया।
5: हाँ।
4: मैं भी उनके साथ गाने लगी।
5: हाँ।
4: लेकिन कुछ पंक्तियों के बाद रुक गई।
5: अच्छा।
4: मुझे आगे के बोल ही याद नहीं आए थे। उस पर लगा कहीं ना कहीं हम अपनी ही विरासत से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं।
5: हाँ, बिल्कुल, ये सही बात कही तुमने। सच कहो कोमल, ऐसा अनुभव मेरा भी है। बचपन में दादी नानी की कहानियां सुनते सुनते मुझे कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। और आज बच्चों को कहानी सुनने की जगह अक्सर जो मम्मी है, जो उनकी माँ है, वो मोबाइल थमा देती है हाथ में, ताकि बच्चा भी शांत और खुद भी

0: अपने काम में व्यस्त हो जाती, लेकिन ये गलत है।
1: और तभी मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर आज भी हमारे घरों में तीज की मेहंदी रचती है, गणगौर के गीत गूंजते हैं, दीपावली पर रंगोली सजाई जाती है और होली पर गुजिया बनती है और रक्षाबंधन पर राखी की थाली स्नेह से सजती है, तो आखिर इन परंपराओं को आज तक किसने संभाल के रखा है?
0: जाहिर सी बात है, घर की महिलाओं ने, है ना। घर की महिलाएं, दादी नानी ने, जिन्होंने कभी इसे अपना कर्तव्य नहीं समझा बल्कि अपना स्नेह समझा, और ये स्नेह हमें सिखाया भी और बताया भी कि कैसे इसको लेके चलना है ना।
1: सोचिए, जब माँ पहली बार बेटी को साड़ी पहनाना सिखाती है, जब दादी पूजा की थाली सजाने का तरीका बताती है, जब नानी अपने हाथों से कोई पारंपरिक व्यंजन बनाकर कहती है इसे ऐसे ही बनाया जाता है, तब वो सिर्फ एक काम नहीं सिखा रही होती है घर में, बल्कि पीढ़ियों से चलती आ रही विरासत हमारे हाथों में सौंप रही होती है। और यही है हमारी आज की चर्चा का विषय भी, पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को सहेजती महिलाएं।
0: बिल्कुल, तुमने सही कहा। तुमने संस्कृति सिर्फ बड़े बड़े स्मारकों या इतिहास की किताबों में नहीं होती, वह तो घर के आंगन से गूंजते लोकगीतों में होती है, त्योहारों की रौनक में होती है और माँ के हाथों के स्वाद में छिपी होती है और बड़ों के आशीर्वाद में भी छिपी होती है हमारी संस्कृति। लेकिन हम बात करें कि घर के किसी कोने पर चद्दर में निकला हुआ सुंदर कसीदा कुछ कहानी कह रहा है, या फिर चिकनकारी का कुर्ता कुछ अलग ही दास्तां बयान कर रहा है, नानी के हाथों से कढ़े हुए रुमाल हमें अपनी विरासत की याद दिलाते हैं कि नानी ने कितने सहेज कर उन्हें संभाल कर हमें सिखाना भी शुरू किया कि ताकि हम उनकी जो कला है उसको सीख सके और आगे उसका संवर्धन हो सके, है ना।
1: और यही वजह है कि महिलाएं हमारी संस्कृति की सबसे मजबूत कड़ी है। वो बच्चे को सिर्फ बोलना नहीं सिखाती बल्कि नमस्ते कहना भी सिखाती है, वो सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाती बल्कि साथ बैठकर खाना बांटने का संस्कार भी देती है, वो सिर्फ त्योहार नहीं मनाती बल्कि उनके पीछे छिपे प्रेम, एकता और परिवार के महत्व को भी जीती है।
0: ये बात तुमने सही कही कि प्रेम और एकता परिवार से ही सिखाए जाते हैं, है ना। जीवन की रफ्तार तेज हो जाए लेकिन अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमेशा हमारी पहचान बनी रहेगी, और हमारी पहचान तभी बनी रहेगी जब हम आधुनिक और परंपरा एक साथ लेके चलेंगे, है ना।
1: बस जरूरत है कि हम अपने बच्चों को कभी दादी नानी की कहानी सुनने दें, उनके साथ कोई लोकगीत गुनगुनाएं, त्योहारों की तैयारियों में उन्हें भी शामिल करें, क्योंकि संस्कृति पढ़ाई नहीं जाती, जी जाती है।
0: और एक दूसरे हाथों में सौंपी जाती है। अब घर की महिलाएं इसे जीती है तभी आने वाली पीढ़ियां इसे अपनाती है, है ना।
1: तो आइए बहनों, आज उन सभी माताओं, दादियों, नानियों, बहनों और बेटियों को प्रणाम करते हैं जो बिना किसी पुरस्कार या पहचान की चाह के हमारी संस्कृति की इन अमूल्य धरोहर को आज भी प्रेम से सहेज रही हैं, क्योंकि विरासत सिर्फ हमें मिलती नहीं है, उसे हर पीढ़ी अपने प्रेम और संस्कारों से आगे बढ़ाती भी है।
0: हाँ, और प्रेम और जो सौहार्द है, भाईचारा है, वो भी परिवारों में ही सिखाए जाते हैं, वो भी माताओं और बहनों के द्वारा, दादी नानी चाची के द्वारा परिवार में प्रेम और स्नेह सिखाया जाता है, तभी तो आपसी भाईचारा बढ़ता है, है ना।

0: पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: माधुरी, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी समाज का समग्र विकास संभव नहीं है।
1: नहीं है।
0: पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देकर उनके नेतृत्व और आत्मविश्वास को नई दिशा प्रदान की है।
1: हाँ।
0: इसी महत्वपूर्ण विषय महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज पर अपने विचार साझा कर रही है डॉक्टर अरुणा भारद्वाज जी। आइए सुनते हैं उनकी ये वार्ता।
1: महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं के लिए समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण हो जिसमें वे अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य को समझ सकें। बालिका, शिशु एवं महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव एवं हिंसा का उन्मूलन हो। महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों के समान भागीदार बन सकें। उन्हें पुरुषों के समान शैक्षणिक अवसर, कैरियर एवं व्यवसाय को अपनाने के स्वतंत्र अवसर उपलब्ध हो सके। वे अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय ले सके। यद्यपि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक में समानता स्थापित करती है, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भी संविधान में प्रत्येक स्तर पर स्त्री एवं पुरुष के मध्य समानता स्थापित की गई है, उन्हें समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं को समाज में अपेक्षित सम्मान तथा अधिकार नहीं मिल पाए। यद्यपि सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में भी महिला सशक्तिकरण के प्रयास किए गए, विशेषतः नवीन पंचवर्षीय योजना में, किंतु अंततः यह अनुमान किया गया कि राजनीतिक सत्ता में समुचित भागीदारी से ही महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। अतः जब 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों से स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब इन संस्थाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक पद पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग

अर्थात सभी वर्गों की महिलाओं को दिया गया। परिणाम स्वरूप देश की नगरपालिकाओं और पंचायतों में 15 लाख से अधिक महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐसा माध्यम है जो उन्हें राजनीतिक सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में सहायक है। ग्रामीण महिलाओं की सत्ता में भागीदारी उनके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। घर में घूंघट में रहने वाली या खेत में मजदूरी करने वाली महिला को पंचायतों के माध्यम से घर की चार दीवारी से बाहर निकलने का अवसर मिला। महिलाओं को पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख की भूमिका मिली। महिलाओं को स्थानीय शासन में आरक्षण से जिस क्रांतिकारी परिवर्तन की आशा की गई थी, धीरे धीरे महिला जनप्रतिनिधियों ने उसे साकार रूप देना प्रारंभ कर दिया। 1995 में जब प्रथम पंचायत चुनाव हुए, तब समाज की पिछड़ी मानसिकता ने महिलाओं के मनोबल को तोड़ने का बहुत प्रयास किया। महिलाओं के लिए कहा जाने लगा कि उसे क्या आता है, वो क्या करेगी, अब लुगाई चौपाल पर पगड़ी बांधकर बैठेगी, वो देखनेती आ रही है जैसी छींटाकशी की जाती थी। 1995 से 2015 तक के अब तक के पंचायतों के कार्यकाल को देखें तो महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति में काफी बदलाव आया है। पहले अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि घूंघट में रहकर ही पंचायत के कार्य करती थी। पंचायतों की बैठकों में उनके पति या पुत्र उनके स्थान पर चले जाते थे। सरपंच पति की धारणा आम थी। पंचायतों में पहले महिलाएं पुरुषों के बीच बैठना व बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। यहाँ तक कि प्रारंभ में तो कई महिलाओं को यह भी ज्ञात नहीं था कि उनका नामांकन किस पद के लिए किया गया है, वे किस पद पर चुनी गई हैं। वह केवल अंगूठा लगाने या हस्ताक्षर करने का ही कार्य करती थी, किंतु धीरे धीरे उनकी इस स्थिति में परिवर्तन आने लगा तथा राजस्थान की महिला जनप्रतिनिधियों ने धीरे धीरे पंचायत की जाजम पर पैर जमा कर कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने पंचायत पटल पर अनेक ऐसे मुद्दे रखे जो पुरुष जनप्रतिनिधियों के लिए भी नए थे। विकास के मुद्दों के साथ साथ महिलाओं जनप्रतिनिधियों ने लिंग अनुपात, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं व बालिकाओं के साथ भेदभाव के मुद्दे उठाने के साथ ही उन्होंने पर्याप्त जानकारी न होने के बावजूद गांव में स्कूल खुलवाने, अवैध निर्माण हटवाने, तालाब पर पाल बनवाने, चारा डिपो खुलवाने, शराबबंदी, परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रसार तथा छुआछूत के विरोध के कार्य किए। अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि अपने गांव की गरीब महिलाओं को काम दिलाने का प्रयास करती हैं, नरेगा में उनके लिए जॉब कार्ड बनवाने की व्यवस्था का प्रयास करती हैं, अपने क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों तथा जिला उद्योग व प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई व अन्य हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण दिलाने का कार्य कर रही हैं। वो बीपीएल महिलाओं को कार्ड दिलवाने, उनके लिए राशन बनवाने तथा उनको राशन दिलवाने में सहायता करती हैं। बीकानेर जिले की महिला जनप्रतिनिधि यदि भी बहुत अधिक मुखर तो नहीं है, फिर भी अनेक महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने काम के बल पर अपनी पृथक पहचान बनाई है। बालिका शिक्षा हेतु स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए कुछ महिला सरपंचों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इनमें ग्राम पंचायत सावत्सर की सरपंच भौरी देवी, बपेव सरपंच सुनीता सारस्वत, जैमलसर की सरपंच चांद कंवर, उदासर की सरपंच नानू देवी और नापासर की सरपंच नथी देवी तथा आनंदगढ़ की समुद्री देवी, ग्राम पंचायत सुई की सरपंच के कार्य उल्लेखनीय हैं। कुछ महिला वार्ड पंचों और पंचायत समिति सदस्यों ने भी सराहनीय रूप से इस क्षेत्र में कार्य किए, जिनमें नाथवाना की मंजीत कौर, मानसर की सुखी देवी, जसरासर की राम प्यारी, मैनासर की रेखा प्रजापत, जालवाली की शालता खातून, कोलायत की सूरज कंवर के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने अपने क्षेत्रों में समय पर स्कूल खुलवाने एवं अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु भी

0: प्रयास किए हैं। ग्रामीण स्वच्छता व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ महिला जनप्रतिनिधि सहयोग कर रही हैं और निर्मल गांव हेतु प्रयास कर रही हैं। इस क्षेत्र में कीतासर की गंगा देवी, खारबारा की दुर्गा देवी, पिपेरा की मंगती देवी, शेरपुरा की सावित्री देवी, लूणा खां की ताजीमा व उगम कंवर, कालू की पूर्णा देवी, बिग्गा की सुगनी देवी तथा जोधासर की केसर देवी ने अपने अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों व उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाने हेतु प्रोत्साहित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की इस दिशा में किंतु अभी भी कांटे हैं। परंपरावादी पुरुष प्रधान सामाजिक ढांचे व शिक्षा के अभाव के कारण अभी भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। अभी भी अनेक महिला जनप्रतिनिधि पंचायतों में सक्रिय भागीदारी नहीं निभा रही हैं। उनकी भूमिका उदासीनता की है। अनेक महिला जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्वों का ज्ञान नहीं है। पंचायतों में सक्रिय भागीदारी उनकी कम है। जुझारू महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है। पंचायतों के 4 कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद अभी भी महिला जनप्रतिनिधियों के पुरुष परिजन, पुरुष जनप्रतिनिधि, पूर्व सरपंच व ग्राम सेवक महिला जनप्रतिनिधियों को दबाने का प्रयास करते हैं। अधिकारों की जानकारी के अभाव में कई बार महिला जनप्रतिनिधि षड्यंत्रों का शिकार हो जाती हैं और भ्रष्टाचार के मामले में अकारण ही फंस जाती हैं। 5वें पंचायत चुनाव में राजस्थान सरकार ने पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है, जिससे शिक्षित महिलाएं चुनकर पंचायतों में पहुंची हैं। अतः अब निश्चय ही वे अधिक सक्रियता व ऊर्जा से कार्य करने में समर्थ हो सकेंगी। विगत 25 वर्षों के पंचायतों के कार्यकाल को हम देखें तो अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं ने पंचायतों की बैठकों में अपनी संख्यात्मक उपस्थिति निरंतर बढ़ाई है। उनके कार्यों में गुणात्मक सुधार भी हुआ है। पारिवारिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक तनावों के बावजूद वे धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो रही हैं और यही है उनके वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा।
1: महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी डॉक्टर अरुणा भारद्वाज। और अब हमारे कार्यक्रम में हम सुनवाते हैं ये गीत।

0: माधुरी जी, पिछले कुछ दिनों में मेरी एक परिचित अक्सर कह रही थी कि उन्हें बिना ज्यादा काम किए ही थकान महसूस होती है।
1: अच्छा।
0: कभी कमर दर्द हो रही है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, तो कभी सीढ़ियां चढ़ने में भी उनको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। तो उन्हें लगा कि शायद काम की वजह से ऐसा हो रहा होगा।
1: ऐसा होता है कि कई बार हम महिलाएं बढ़ती उम्र की वजह से भी इस चीजों से परेशान हो जाती है। ऐसा आजकल बहुत से लोगों के साथ भी हो रहा है। हम भी अक्सर सोच लेते हैं कि बढ़ती उम्र या ज्यादा काम की वजह से शरीर में दर्द होना सामान्य सी बात है, लेकिन ये किसकी कमी से हो रहा है ये हमें ध्यान देना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई ना, तो पता चला कि उनके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है।
1: अच्छा।
0: तब समझ आया कि कई बार शरीर हमें पहले से ही जो है संकेत देने लगता है, बस हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ। और अपने काम में व्यस्त होते चले
1: जाते हैं। बिल्कुल, हम उसकी ध्यान नहीं देते कि वो क्या कहना चाह रहा है शरीर, है ना। सच कहा आपने। और खास बात यह है कि समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है, आजकल युवाओं और महिलाओं, यहाँ तक कि बच्चों में भी ये कमियां देखने की मिल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे घर से आंगन गायब हो गए हैं, और यही इसका जो है इसका नुकसान यही है। इसी वजह से कई परेशानियां हमारे सामने आ रही है।
0: बिल्कुल। तो जानते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए इतने जरूरी क्यों है बहनों, और इनकी कमी हमारे स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करती है।
1: सबसे पहले अगर कैल्शियम की बात करें तो ये हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को सही ढंग से अवशोषित करने में मदद करता है, है ना।
0: और अगर बात करें, यानी अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होगी माधुरी, तो पर्याप्त कैल्शियम लेने के बाद भी उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि दोनों का संतुलन बहुत ज्यादा
1: बहुत जरूरी है। इसकी कमी होने पर बार बार थकान महसूस होती है, कमर या घुटनों में दर्द होता है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, पैरों में ऐंठन, हड्डियों का कमजोर होना या बार बार फ्रैक्चर होने जैसी समस्याएं आने लगती है। और इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते कि हम क्या रहे हैं, हम कैल्शियम को कितना ले रहे हैं। अब यदि हम कैल्शियम ले भी रहे हैं तो क्या हमारा शरीर उसे अवशोषित कर रहा है, ये भी जरूरी है।
0: महिलाओं को इस और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गर्भावस्था है, स्तनपान हुआ या फिर रजोनिवृत्ति है,
1: उस समय भी ये

0: समस्या आती है
1: उसके बाद में जो है कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे समय में संतुलित आहार और नियमित जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। माधुरी कभी कभार मतलब जैसे डॉक्टर को अगर हम दिखाते हैं तो वैसे तो डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए जरूरी है, लेकिन क्या कुछ महिलाएं या हमारे घर जो है वो अपने आप में ही डॉक्टर बन जाते हैं।
0: वो गलत है।
1: मतलब जैसे किसी का पैर दुख रहा है तो चलो ये दवाई ले ली, घुटना दुख रहा है तो चलो ये दवाई
0: दवाई,
1: या फिर ये भी होता है कि जैसे आपका कुछ दर्द हो रहा है तो मैंने आपको फलां दवाई बता दी है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि हो सकता है वो मुझे सूट कर रहा हो सॉल्ट, हो सकता है वो सॉल्ट आपको सूट ना करे, तो
0: आपको ना करे और आपके शरीर की जरूरत अलग है और फलाने के शरीर की जरूरत अलग है, तो अलग अलग शरीर के हिसाब से अलग अलग जरूरतें होती है, तो डॉक्टर से सलाह करके ही दवा लें। और दवा से ज्यादा हमारे जीवनचर्या हमारी लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है, और उससे भी कहीं ज्यादा हमें व्यायाम करने की आवश्यकता है और संतुलित भोजन और जो आवश्यक है जिसमें आवश्यक मात्रा में कैल्शियम हो, आवश्यक मात्रा में विटामिन डी हो। वैसे तो कहने को विटामिन डी जो है वो किसी भी वनस्पति से नहीं मिलता और न ही किसी खाद्य पदार्थ से मिलता है, बहुत कम होता है, मिलता भी है तो केले में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरत पूरी करता है वो है सूरज की रोशनी, वहीं से हमें विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो सकती है।
1: जैसा कि हम भोजन की बात कर रहे हैं तो भोजन के अंदर आप ले सकती हैं दूध, दही, पनीर, रागी, तिल, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, बादाम जैसे खाद्य पदार्थ कैल्शियम में अच्छे कैल्शियम के जो है अच्छे स्रोत होते हैं। और वहीं जो आप धूप की बात कर रही है, एक चीज और है कि जैसे बहनों में या फिर जो छोटी बच्चियां हैं, युवा होती हुई बच्चे हैं, उनमें यूं रहता है कि धूप जो है वो हमें काला कर देगी।
0: ये खास बात होती है,
1: उसका क्या उपाय है?
0: तो अक्सर महिलाएं कहती है धूप में जाने से हम काले हो जाएंगे या टैनिंग हो जाएगी या फिर हमारे मुंह में झाइयां आ जाती है,
1: पीछे पीछे से थोड़ी बहुत धूप,
0: या फिर कई बार त्वचा जल भी जाती है। तो हानिकारक जो किरणें आती है वो दिन के समय आती है, तो आपको जो धूप लेनी है, धूप का सेवन करना है, वो सुबह के 7 से 8 बजे का समय या 8 से 9 बजे का समय, इस समय आपको धूप लेनी है, वो जरूरी है। सुबह सुबह की धूप जो है,
1: वो आपको ये दिक्कत नहीं देगी,
0: वही विटामिनों को जो है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, तो उस समय आप ले और उसी उसमें ही अपनी गतिविधियां दैनिक गतिविधियां करें वो ज्यादा सही है।
1: फिर आप शाम को ले,
0: हाँ शाम को इतनी नहीं होती जितनी सुबह में होती है, तो ये जरूरी है। और किसी भी व्यक्ति में यदि कमी आ जाए तो डॉक्टर की सलाह ले और उससे कैल्शियम और विटामिन डी की दवाइयां या सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं वो भी ले सकती हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की निगरानी में ही लेने चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी आप सूरजमुखी के बीज ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं और अंकुरित अनाज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और इसके अलावा जो आपका भुना हुआ चना है ये भी काफी फायदेमंद होता है, है ना।
1: याद रखिए बहनों, स्वस्थ जीवन की नींव मजबूत हड्डियों से ही शुरू होती है, इसीलिए शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, समय पर जांच करवाएं, संतुलित भोजन लें, रोज कुछ समय धूप में बिताएं और नियमित व्यायाम को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि छोटी छोटी सावधानी आज आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है।
0: और मैं ये कहना चाहूंगी ज्यादा श्रम या थोड़ा श्रम तो करना ही चाहिए और थोड़ा बहुत पैदल रोजाना चलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।

0: बहनों, हमारे समाज में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जिनका उद्देश्य उनके कल्याण से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य वंचित वर्ग के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताओं का समग्र विकास करना है, जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, पूर्व विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करना है। ICDS परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों का एक निश्चित प्रतिशत उन ब्लॉकों गांवों तक स्थित होगा जहां अल्पसंख्यक समुदायों की पर्याप्त आबादी है। ये हाँ, कम से कम ये सारी जो लाभ है उन तक पहुंच सके, है ना?
1: बिल्कुल माधुरी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के लाभ इन समुदाय को भी समान रूप से उपलब्ध हों। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और इसी तरह अन्य सरकारी योजनाओं के तहत स्कूली शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के मेघावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना करना, तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम में कौशल उन्नयन जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।
0: हाँ, और इसमें नौकरी में समान अवसर मिले इसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। बैंकों से ऋण सब्सिडी में उपलब्ध कराना, ये भी एक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके द्वारा इनके बच्चों को काफी सब्सिडी, जो बैंकों से ऋण मिलता है उसमें सब्सिडी उपलब्ध होती है, और इसके साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार करना भी इस योजना का लक्ष्य है। और अनेक शिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चला जा रही है जो वंचित वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई है। और इसी के साथ सुनते हैं अब ये गीत।

0: मैंने कहा जाता है जिस समाज में महिलाएं सशक्त होती है वहां आने वाली पीढ़ियां भी सशक्त बनती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को संजोते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर और सम्मान दें, क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज भी आगे बढ़ता है।
1: आइए हम सब मिलकर ऐसी सोच अपनाएं जहां परंपरा और प्रगति और एक दूसरे की पूरक बने और हर महिला आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सके और अपने घर को भी एक अच्छा घर बना सके और अपने बच्चों को आगे ले जाए, है ना, संस्कार दे सके।
0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के महिला जगत से मुझे और
1: माधुरी शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ में 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनी

0: ने राज्य में निवेश किया है।
1: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार,

0: जिला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी भजन।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना नया रास्ता फिल्म का ये भजन। कार्यक्रम में आप सुनिए गीता दत्त के स्वर में अगला फिल्मी गीत।

पुलिस। हेमंत कुमार की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म हाउस नंबर 44 का ये गीत। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म दूर का राही का ये गीत। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत किशोर कुमार का।

प्रदीप के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म संस्कार सीता और अनसुया फिल्म का ये गीत। फिल्मी भजन आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। दीजिए आप सुनिए मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म गहरा दाग का ये गीत।

प्रदीप के गाए फिल्म दशहरा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा के प्रसारणों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडियल वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलू मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। इसके साथ ही हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब प्रारंभ होती है। हम इस सभा में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा में आइए, सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिका की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेश को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। जम्मू की एक अदालत ने अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन करने वाली पुस्तकें प्रकाशित और प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार 3 प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विवादित पुस्तकों में पर्सनैलिटीज एंड एजेंट्स ऑफ J&K और ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दों का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमन कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि मुलाकात में संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने और भारत न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से जारी संबंधों को और गहरा करने के महत्व पर जोर दिया गया। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री कानो कोजी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष

और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव व्लादिस्लाव बार्तोसिजेस्की और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर सचिव माइकल बरोंस्की से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वियतनाम के फू क्वेक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 186 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। शाम के 5:05 हुए, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं गीता सोनी और रिपु दमन सिंह।
1: जिंदगी की उलझन को मुस्कुराहट से सुलझाते हैं,
2: यही तो है मुकम्मल तौर पर जिंदगी को जी जाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में मैं हूं आपका दोस्त रिपु दमन सिंह
2: और मैं हूं आपकी दोस्त गीता सोनी। शाम के 5:05 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं हम युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: गीता, कल रात मैं बीकानेर के पुराने दौर और कला से जुड़ी एक किताब पढ़ रहा था। उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प वाक्य लिखा हुआ था जिसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर दिया।
2: अच्छा, ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने? किसी पुराने खजाने या रहस्य की कहानी थी क्या?
1: अरे नहीं बाबा, रहस्य नहीं, लेकिन बात किसी खजाने से कम भी नहीं थी। उस किताब में एक पुराने समय का एक किस्से का जिक्र लिखा हुआ था कि एक दिन कोई सज्जन जूनागढ़ किले के सामने से गुजर रहा था। हम सब जानते हैं कि आजकल तो वहां का नजारा उस तरह का नहीं होता, लेकिन उन दिनों वहां आसपास कुछ कारीगर बैठा करते थे चाक लेकर। और एक व्यक्ति ने देखा, रुक कर देखा कि एक बुजुर्ग चाक पर एक मिट्टी का बड़ा ही सुंदर सा बर्तन घट रहे हैं।
2: वाह, पुराने बीकानेर की तो बात ही अलग थी। उसका कला और गीली मिट्टी की वो सौंधी खुशबू। फिर क्या हुआ उस कहानी में?
1: कहानी में हुआ यूं कि चाक पर बड़ा ही तेजी से घूमते हुए उस सुराही जो बर्तन घूम रहा था उस पर अचानक बुजुर्ग का हाथ लग गया और वो थोड़ा बिगड़ गया। और बुजुर्ग देखने लगा और उस व्यक्ति ने देखा कि शायद अभी बुजुर्ग जो कारीगर है वो झल्ला जाएगा और उसे तोड़कर मिट्टी वापस गूंथने लगेगा। लेकिन हुआ क्या, उस बुजुर्ग ने क्या किया?
2: क्या किया
1: उस बुजुर्ग ने? किया कि बड़ी ही शांति से उस बिगड़े हुए हिस्से को अपनी उंगलियों से हल्का सा मोड़ दिया और देखते ही देखते वो एक बेहद खूबसूरत डिजाइन का आकार उसने ले लिया। और राहगीर से रहा नहीं गया, ऐसी सारी चीजें देखकर तो उसने उन बुजुर्ग से जाकर पूछा कि बाबा ये तो खराब हो गया था, है ना? तो बुजुर्ग ने बड़े ही शांति से मुस्कुराकर उसे जवाब दिया कि बेटा, मिट्टी हो या हमारी जिंदगी, कभी कभार आकार थोड़ा सा बिगड़ ही जाता है, बस इंसान को उसे नया रूप देना आना चाहिए।
2: वाह, सच में रिपुदमन, उस किताब के इस छोटे से किस्से से कितनी बड़ी बात सामने आती है। अक्सर हम लोग भी यही करते हैं कि जिंदगी में अगर हमारी कोई छोटी सी योजना बिगड़ जाए तो हम पूरा दिन खराब कर लेते हैं।
1: बिल्कुल गीता, जबकि असल में बिगड़ी हुई चीज को भी कोई एक खूबसूरत शुरुआत का हिस्सा हो सकती है, बस हमारा देखने का नजरिया और उस परिस्थिति को ढालने का हुनर हमें आना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा। अब हमारे अपने बीकानेर के लोगों के मिजाज को ही देख लो। कोई कितने भी जल्दी में क्यों ना हो, लेकिन किसी चौराहे पर अगर दो परिचित मिल जाए तो मुस्कुरा कर खम्मा गणी कहने और दो पल गपशप मारने

0: की जो आदत है वो भी अपने आप में एक मानो सुकून सा देती है।
1: एकदम सही कहा। और बातों ही बातों में अगर गर्मा गर्म चाय और थोड़ी सी भुजिया हो जाए तो चेहरे पर अलग ही संतोष आ जाता है, और ये किसी मास्टरपीस पेंटिंग से कम थोड़ी ना है।
0: सच में अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई कैनवास पर रंग उकेरने या किसी बड़े मंच पर गाने बस यही हुनर है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सुबह उठकर अपने अस्त व्यस्त कमरे को समेटने से लेकर किसी रूठे हुए दोस्त को एक जोक सुनाकर हंसा देने तक ये सब भी एक तरह से बेहतरीन कला ही तो है।
1: 100% की बात कही है तुमने। बस अपनी जिंदगी के इस कैनवास में कलाकार के पास फर्क इतना ही है कि कलाकार के पास ब्रश होता है और हमारे पास रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले हैं। पता है गीता, इस कैनवास पर कभी कभार रंग फैल भी जाते हैं, जैसा कल शाम मेरे साथ हो गया था।
0: अब क्या हो गया था तुम्हारे साथ कल?
1: मैं ज्यादा कुछ नहीं, अपने लिए चाय बनाने की कोशिश कर रहा था और बना भी रहा था, और बनाते बनाते ख्यालों में खो गया तो चीनी की जगह मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया।
0: हाय राम, फिर क्या तुमने उस नमकीन चाय को पिया?
1: पिया, पर मैंने उसे एक नया नाम दे दिया, न्यू एज एक्सपेरिमेंटल सूप। नाम देकर पीने की कोशिश की, हालांकि एक घूंट के बाद मुझे उसे सिंक में ही डालना पड़ा। लेकिन मजे की बात तो यह है गीता कि मुझे खुद पर गुस्सा नहीं आया बल्कि अपनी हरकतों पर मुझे हंसी आई।
0: बस बस बस यही तो बात है कि बिगड़े हुए काम पर जल्लाने की बजाय उसे एक हल्के फुल्के अंदाज में ले लेना, खुद पर हंस लेना, यही वो छोटे छोटे रंग है जो जिंदगी की तस्वीर को खूबसूरत बनाती है।
1: और क्या, जैसे बीकानेर की किसी तंग गली में आमने सामने दो गाड़ियां टकरा जाए, मिल जाए तो लड़ने की बजाय थोड़ा बहुत पीछे हटकर लोग मुस्कुराकर रास्ता निकाल लेते हैं, इसे ही तो कहते हैं फाइन आर्ट्स।
0: बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बात भाई इतनी सी है कि हर पल को अपनी तरह से अपनी सहजता से जियो, रास्ते खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेंगे। इस सफर में अगर सुर और ताल का सही तालमेल हो और तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है।
1: बिल्कुल, और सुर और ताल की जब तुमने बात कर ही दी है तो बिल्कुल हम भी सुर और ताल से जुड़ जाते हैं इस रेडियो के माध्यम से।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे बॉय।
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी क्विज सेगमेंट का जिसमें हम आपसे दो सवाल करेंगे जिनका जवाब हम आपको प्रोग्राम के अंत में देंगे। तो प्रोग्राम के अंत तक बने रहिएगा। तो आपका पहला सवाल है
8: कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है।
7: और दोस्तों दूसरा सवाल है सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है। ये तो आप

0: बेशक जानते ही होंगे।
1: वैसे रिपु दमन, सच बताना, अगर हमारे घर में कोई चीज अचानक से टूट जाए या फिर काम करना बंद कर दे तो तुम सबसे पहले क्या करते हो?
0: अरे जाहिर सी बात है गीता, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ तो मैं सबसे पहले अपना देसी जुगाड़ आजमाऊंगा। टीवी का रिमोट ना काम करे तो उसे दो बार ठोक देता हूँ, और फोन अगर गलती से पानी में गिर जाए तो तुरंत उन्हें चावलों के डिब्बे में डाल देता हूँ। हम सब तो पैदाइशी इंजीनियर हैं यार।
1: बिल्कुल, ये जो जुगाड़ या इंजीनियरिंग है उसका ये टैलेंट ये सच में हमारे DNA में ही है। लेकिन रिपुदमन, आज मैं तुम्हें एक ऐसे देसी जुगाड़ और कमाल की इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाली हूँ, और उसने किसी टीवी या फोन को नहीं बल्कि पूरे की पूरे शहर को डूबने से बचाया
0: है। पूरे शहर को डूबने से? भाई साहब, ऐसा कौन सा जुगाड़ था और किसने लगाया ये जुगाड़?
1: ये जो मास्टर स्ट्रोक था, आज से कहीं 250 साल पहले लगाया था भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी ने। हम सब उनके अजय लोहागढ़ किले की मजबूती की तो कसमें खाते ही है, लेकिन उनकी असल दूरदृष्टि और इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है मोती झील।
0: मोती झील नाम तो सुनने में काफी रॉयल है, पर इसका जुगाड़ और शहर के डूबने से क्या कनेक्शन है?
1: कनेक्शन तो बहुत गहरा है। असल में उस दौर में रूपा रेल और बाण गंगा नदियों में जो तूफान आया था तो भरतपुर शहर में भयंकर बाढ़ आ जाती थी। तो महाराजा सूरजमल जी ने दिमाग लगाया कि पानी से लड़ना तो बेवकूफी है, उसे तो दोस्ती ही करनी पड़ेगी। उन्होंने नदियों के पानी को रोक कर एक विशाल झील बनवा दी, और नतीजा ये निकला कि बाढ़ का खतरा हमेशा के लिए खत्म और शहर को मिल गया मीठे पानी का एक बहुत बड़ा खजाना।
0: वाह, मतलब आपदा आई और उन्होंने उसे अवसर में बदल दिया, एक तीर से दो निशाने।
1: बिल्कुल।
0: वैसे गीता, हम बीकानेर वाले भी इतना सारा मीठा पानी एक जगह देखेंगे तो उसे मोती से कम नहीं मानेंगे। यहाँ तो अपने गर्मियों में मटकी का ठंडा पानी भी किसी अमृत से कम नहीं लगता।
1: सच में, इसीलिए तो इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। और सिर्फ इंसानों के लिए क्यों, तुम्हें पता है केवला देव नेशनल पार्क में जो हजारों विदेशी पक्षी मीलों का सफर तय करते हैं, उनका दाना पानी और वहां की हरियाली भी इसी मोती झील की बदौलत है।
0: वाह क्या बात है, मतलब महाराजा साहब ने सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि पर्यावरण और परिंदों का भी वीजा और पासपोर्ट तक सेट कर दिया था। लेकिन गीता, मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गई पुराने जमाने की बातें, लेकिन आजकल उस मोती झील के क्या हाल चाल है? क्या वो आज भी मोतियों जैसी चमक बरकरार है या
1: हमने उस पर भी अपना नया जुगाड़ लगवा कर दिया है? देखो रिपुदमन, सच कहूँ तो आज हमने इसे मोती झील से कचरा झील बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आधी से ज्यादा झील को तो जलकुंभी अपनी गिरफ्त में ले ही रखी है।
0: अरे बाप रे, और बाकी हम इंसानों ने उस कसर पूरी कर दी होगी चिप्स के पैकेट और खाली बोतलों से।
1: लोग वहां घूमने जाते हैं और उसे कोई जादुई डस्टबिन समझ लेते हैं, एक सिक्का मन्नत के नाम पर फेंकते हैं और 4 प्लास्टिक के रैपर अपनी सुविधा के नाम पर।
0: ये तो बहुत ही बड़ी बात है, जिस झील ने शहर को नदियों के कहर से बचाया, आज उसी झील को इंसानों के कहर से बचने की जरूरत आ गई। ये कितनी दयनीय स्थिति है कि आज वो झील किसी ऐसे सूरजमल राजा को ढूंढे जो उसे इन चीजों से बचा सके।
1: बिल्कुल, हमें समझना होगा दोस्तों कि विरासत सिर्फ महलों और किलों की नहीं होती, नदियों और झीलों की भी तो होती है। अगर हम आज इनकी कदर नहीं करेंगे तो कल ये हमारे इतिहास की किताबों में बस एक सूखा सा चैप्टर बनकर रह जाएगा।
0: हमारे अपने बीकानेर की बात देखो, बीकानेर में भी कितनी विरासतें हैं जिनको हम आज भी सहेज कर रखते हैं। पुराने कुएं, बावड़ियां, हवेलियां, कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो बिखरने लगी है, पर हमारे लोग यहाँ के उन्हें अभी भी सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। बस हमें प्रकृति को भी सहेजने की जरूरत है।
1: एकदम पते की बात कही तुमने, जब हम प्रकृति से दोस्ती करते हैं तो जिंदगी का संगीत खुद ब खुद सुरीला हो जाता है।
0: और ऐसी सुर और ताल को हम महसूस करेंगे अभी हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा।

0: रिपुदमन, बीकानेर की ये जुलाई वाली उमस और चिपचिपी गर्मी तो दिल्ली की गर्मी से भी खतरनाक लगती है। रेगिस्तान की ये हवा इतनी भारी है कि इस मौसम में तो हिलने का भी मन नहीं करता।
1: अरे गीता, यही तो हमारे मरुधरा का असली मिजाज है। यहाँ लोग इस उमस से बेहाल हैं, पर वहीं इस बीकानेर के धरती में कड़कड़ाती ठंड में, मैं इसकी विपरीत बात कर रहा हूँ, ठंड ठंड में तुम्हें ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जहाँ अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ज़रा सोचो, तुम्हारे सामने धधकते हुए अंगारों का ढेर लगा हुआ है और उस पर कुछ लोग नंगे पैर नाच रहे हैं।
0: ओह अच्छा, तो तुम अग्नि नृत्य की बात कर रहे हो जो कि कतरिया सर गांव का जसनाती संप्रदाय में होता है। लेकिन दोस्तों, अगर इस कड़कड़ाती गर्मी में अंगारों की बात करें तो उसका ख्याल भी डराने वाला है।
1: बात तो तुमने सही कही है, पर जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष ये नृत्य करते हैं। जब ये नृत्य गुरु का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर वो कहते हैं फतेह फतेह, तो ये एक अलग ही मानसिक चेतना में चले जाते हैं और पैरों से अंगारों को इस तरह से उड़ाते हैं जैसे मानो कोई सूखी पत्तियां उड़ा रहा हो। और इसे मतीरा फोड़ना और हल जोतना कहा जाता है उनकी भाषा में।
0: वो अंगारों से होली खेलता है। इस उमस भरे बीकानेर में से थोड़ा सा बाहर अगर निकले तो शेखावाटी की तरफ मौसम शायद थोड़ा अच्छा होगा।
1: शेखावाटी में भी तो गर्मी होगी ना, लेकिन वहां के नृत्यों का जोश उसे भुला देता है। होली के दिनों में वहां का सबसे कमाल नृत्य है गिंदड़ नृत्य। ये पूरी तरह से पुरुष प्रधान नृत्य है।
0: हाँ, और इस नृत्य में कुछ पुरुष हूबहू महिलाओं के कपड़े पहनते हैं जिन्हें मेहरी या फिर गणगौर कहा जाता है। सोचो, मूंछों वाले गबरू जवान राजस्थानी लोग घाघरा चोली पहनकर घूंघट निकालकर पारंपरिक महिलाओं की तरह लचकते हुए नाचते हैं।
1: ये जेंडर रोल रिवर्सल का इतना पुराना और जीवंत उदाहरण है कि देखने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, और नृत्य की बात हो और घूमर ना हो तो ऐसा लगता है मानो राजस्थान की ही बात अधूरी है। फिल्मों में तो हमने बहुत देखा है, पर घूमर को राजस्थानी लोक नृत्य का सिरमौर या फिर नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। इसका मुख्य आकर्षण है कि घाघरे का घेरा, जब महिलाएं गोल चक्कर लेती है तो उनका 80 गली का घाघरा एक परफेक्ट सर्कल बनाता है।
1: और मारवाड़ की ही ये वो जादुई कला है जिसने यूनेस्को भी सराहता है, यानी कालबेलिया। ये सपेरा समुदाय का नृत्य है। काले रंग के घेरे पर रंग बिरंगे कांच और मोतियों का काम होता है। जब पुनी और तान पर नृत्यांगनाएं थिरकती है तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात नागिन लहरा रही हो। क्या बात है, प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो बाई ने तो इसे साल 2010 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में भी शामिल करवाया है।
0: सच में, और गुलाबो बाई की ये जो कहानी है ना, वो वाकई में बेमिसाल है। अच्छा रिपुदमन, मेवाड़ के पहाड़ों और जंगलों में कौन कौन से नृत्य हो गए जिनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है?
1: देखो, मेवाड़ में भील जनजाति का गढ़ है गीता। वहाँ का सबसे अनोखा नृत्य है गौरी, लेकिन ये सिर्फ नृत्य नहीं है, ये एक नृत्य नाटिका है जो लगातार 40 दिनों तक चलता है। इसमें लोग भाग लेते हैं और जो लोग भाग लेते हैं वो 40 दिनों तक घर भी नहीं जाते।
0: और

0: है, ऐसा भी सुनने में आता है कि ये जो नृत्य है वो शिव का नृत्य है। वैसे मुझे तो वो स्टंट वाला नृत्य जानना है जिसमें लड़कियां सिर पर मटके संतुलित करके कांच पर नाचती है। मैंने इसकी तस्वीरें काफी देखी है लेकिन उसको कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाई मैं।
1: अरे वो तो भवाई नृत्य है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में बहुत ही लोकप्रिय है। नृत्यांगनाएं आमतौर पर 7-8 पीतल के घड़े सिर पर रखती है और अपनी कलाकारी दिखाती है, लेकिन एक कलाकार अस्मिता कला ने सिर पर 111 घड़े रखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
0: क्या बात है, ये तो मौत से खेलने जैसा है। और वो मंजीरे वाला डांस कौन सा है जिसकी काफी चर्चाएं होती रहती है?
1: वो है 13 ताली नृत्य, जो लोक देवता बाबा रामदेव के मेले में कामर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है।
0: अच्छा तो ये सब बातें तो हो गई, लेकिन जयपुर, अजमेर और भरतपुर तो रह गया, इनकी क्या रंग है?
1: देखो नृत्य तो इतने सारे हैं जिनकी चर्चाएं कभी खत्म नहीं होगी, पर अभी वक्त हो चला है उस सेगमेंट का, यानी क्विज सेगमेंट का। तो अभी हम क्विज सेगमेंट के जो प्रश्न जो हमने हमारे श्रोताओं से शुरुआत में पूछे थे उनका जवाब देने का वक्त हो चला है। तो हमारा पहला प्रश्न था
0: कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में कहां बनाया जा रहा है?
1: तो इसका जवाब था चौंप, जयपुर में। और दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान कौन से स्थान पर है?
0: और इसका जवाब है फर्स्ट प्लेस पर।
1: बिल्कुल। तो गीता किस चीज का वक्त है तुम जरा बताओ मुझे।
0: अब वक्त हो गया है हमारे दोस्तों को आज की रोजगार सूचना देने का।
1: बिल्कुल तुमने एकदम सही कहा। तो आरपीएससी ने एक भर्ती एक विज्ञप्ति जारी की है सहायक अभियोजन अधिकारी के तौर पर। इसकी एलिजिबिलिटी और इसके ऊपर उम्र, जो आप निम्नतम उम्र पर जो आप आवेदन कर सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं इसकी योग्यता क्या रहेगी।
0: इसकी योग्यता है कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन यानी कि LLB की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी और हमारी अपनी राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी जरूरी है।
1: और युवाओं की उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को राजस्थान सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है।
0: और इसके ऑनलाइन आवेदन पर वो उसकी अंतिम तिथि है 19 जुलाई।
1: और 19 जुलाई से पहले आप इस आवेदन को पूरी तरह से भर लीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि का इंतजार करना बहुत ही गलत हो सकता है। तो गीता आज हमने इतने सारे विषयों पे बात की, सुकून की बात की, जीवन के असली लक्ष्य की बात करी, यानी लक्षद्वीप की बात की हमने। तो तुम इस खूबसूरती को किस नजरिए से देखती हो गीता?
0: मेरा तो यही कहना है कि दोस्तों जीवन है जीने की कला।
1: और इस कला को हम दिन ब दिन सीखते हैं। कुछ नए किस्से हमारे साथ रोज होते हैं, कुछ ऐसी बातें हमारे साथ रोज होती है जो हमें हर दिन कुछ ऐसा सिखा देती है, पर अगर हम उन्हें परेशानियों का रूप दे देंगे तो हम उनसे सीखने के बजाय उनसे ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और अगर हम परेशान हो जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी से ही परेशान होते चले जाएंगे। तो इन किस्से कहानियों को एक पॉजिटिव वे में लीजिए और हमारी इस बात को भी पॉजिटिव लेना, क्योंकि हम कल फिर से लौटेंगे आपके पास इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे गीता सोनी और रिपु दमन सिंह। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए। आइए अब सुनते हैं हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी कुछ ही देर में यानी 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत, वही 6:40 पर हम आपको सुनाएंगे जिले की चिट्ठी।

जगत। जी हाँ, ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे। समय रहेगा ठीक 7 बजे, वही 7:45 और रात्रि 10:30 पर सजेगी भक्ति संगीत की महफिल।

ये थी हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और

0: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़, मुगले आजम फिल्म के लिए।

वाणी जयराम और साथियों की आवाज़ में आपने फिल्म गुड्डी का ये खूबसूरत नगमा सुना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम अरू चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश। मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 6:30 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: गांवों को टीबी मुक्त करने के लिए ग्राम सेवकों की जवाबदेही पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि टीबी को आंकड़ों में नहीं बल्कि व्यवहार में हरेक मरीज पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे टीबी को पूरी तरह खत्म किया जा सके। राज्यपाल ने टीबी रोगियों को निक्षय मित्र किट भी वितरित किए। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य को 2030 तक पूरी तरह टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभियान का 90% लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। अधिक जोखिम वाले 11,000 से ज्यादा गांवों का सर्वे किया गया है। इनमें से 9,000 से ज्यादा गांवों में विशेष शिविर लगाकर टीबी मुक्त राजस्थान के लिए कार्यवाही की गई है। श्री खींवसर ने बताया कि राजस्थान में देश में सबसे अधिक एक्सरे स्क्रीनिंग की गई है। राज्य के एनएचएम निदेशक जोगाराम ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान चालू किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में जांच के लिए नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। इसके तहत ₹2,000 तक की जांच के लिए पहले से मंजूरी नहीं लेनी होगी। वहीं तत्काल जांच के मामलों में टीपीए को 1 घंटे के अंदर और सामान्य मामलों में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी। तय समय सीमा में कोई निर्णय नहीं होने पर आवेदन को ऑटो अप्रूव्ड यानी स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। वहीं आपातकालीन मामलों में पहले की तरह किसी भी तरह की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि टीपीए का मुख्य काम मरीजों के कैशलेस इलाज और बीमा दावों की प्रक्रिया को संभालना है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए ही अस्पताल के साथ मिलकर इसका अनुमोदन करता है। सरकार ने आरजीएचएस से सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को इसकी कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं। देशभर में जुलाई माह को अंगदान जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी आम लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन सोटो से जुड़े डॉक्टर धर्मेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अंगदान से जुड़ी भ्रांतियां दूर की जा रही हैं।
1: हम आम जन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रेनडेड के बाद में अगर उनमें से 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज सिरोही जिले के आबू रोड पहुंचे। उन्होंने मानपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। श्री अठावले ने सद्भाव और सामाजिक समरसता को आज के समय की जरूरत बताया। पत्रकारों से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि सरकार जनहित योजनाओं के जरिए हर वर्ग को राहत देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
2: एमएसएमई के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। किसानों की जो फसल है उस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा भाव मिले उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और जो भी बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजना आती है तो उनको पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से होगा।
0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली विशेष रेलगाड़ी आज राजधानी के जयपुर स्थित दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ी तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और मदुरै लेकर जाएगी। इस मौके पर श्री कुमावत ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए यात्रा के दौरान

0: वाहन अधिकारी, डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो देख सकते हैं। प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने सहित अन्य विषयों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ऋण पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आधुनिक तकनीक के उपयोग और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली के भंडारण के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण है। इससे पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होगी और डिस्कॉम को हर साल बचत होगी। इसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बुकारामंगा में हुई इस प्रतियोगिता में कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर भारतीय टीम के सभी प्रतिभागियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने इसे देश की युवा शक्ति का विज्ञान के प्रति जुनून बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी देश का गौरव बढ़ाने वाले इन प्रतिभाशाली युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राज्य में मॉनसून का पहला दौर थमने के साथ ही गर्मी और उमस का असर फिर से बढ़ गया है। अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिन के साथ ही रात में भी उमस बनी हुई है। फलौदी में कल पारा 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर और अलवर में भी दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। उधर हनुमानगढ़ में तेज गर्मी और उमस के बीच आज दोपहर बाद मौसम बदला और कुछ देर अंधड़ के साथ झमाझम बरसात हुई। सिरोही में बूंदाबांदी हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी आबू राज की सुंदर वादियों का आनंद ले रहे हैं।
1: सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। पहाड़ियों पर छाए बादल, धुंध से ढकी वादियां और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पर्यटक नक्की झील में नौकायन का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: मौसम विभाग ने 15 जुलाई के बाद मॉनसून का नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके बाद 2-3 दिन में कमजोर पड़े मॉनसून के फिर से रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। आज राजधानी जयपुर और भरतपुर संभाग के 9 जिलों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2-3 दिन में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्र में हल्की बरसात का पूर्वानुमान है। जोधपुर और बीकानेर में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कल जयपुर में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि ये वेबिनार प्रदेश भर के सभी पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानों के लिए होगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचारों और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर मंथन किया जाएगा। जयपुर शहर में ट्रैफिक प्रबंधन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के साथ नई शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत जल्द ही सिग्नल का फिक्स टाइमर बंद होगा और सड़कों पर लाइव ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल अपने आप बदलेगा। न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
2: 24 घंटे काम करने वाली AI आधारित ये व्यवस्था पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 39 दिनों तक इसका ट्रायल रामबाग सर्कल पर किया गया। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 488,000 से ज्यादा वाहनों ने सुगमता से चौराहा पार किया। ये AI सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक ही मैनेज नहीं करता बल्कि अनुशासन भी बनाए रखता है।

0: नई तकनीक से वाहनधारियों के समय के साथ ही ईंधन की भी बचत हो सकेगी। जल्द ही इसे पूरे शहर में विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
1: कोटा में आज एक सड़क हादसे में दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दो अन्य घायल हो गए। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हैंगिंग ब्रिज के पास एक बेकाबू कार के पलटने से हुई, जिसमें कार सवार युवक हादसे का शिकार हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों एनआरआई तक अपनी पहुंच बढ़ाने और नए जमा

0: एनआरआई तक पहुंच बढ़ाने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आरबीआई की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, वर्ष 2030 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पंचायतवार प्रभावी निगरानी पर जोर दिया। आरजीएचएस में नई व्यवस्था आज से लागू, मरीज ₹2000 तक की जांच सीधे करवा सकेंगे। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर जयपुर में बैठक हुई। और राज्य में मानसून का पहला दौर थमने के बाद गर्मी और उमस का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। पिछले महीने कोटपूतली बहरोड जिले में कई सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियां संपन्न हुई। इसके अलावा जिले में मॉनसून ने दस्तक देकर लोगों को गर्मी से राहत दी। इन्हीं सब गतिविधियों के साथ सबसे पहले बात करेंगे दिशा बैठक की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े विषय रखे। पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों से संबंधित लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के प्रारूप पर सुझाव लेने के लिए जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि सरकार इस विषय पर सभी वर्गों की राय लेना चाहती है। बैठक में जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें लोगों के राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, बिजली, पंचायत, चिकित्सा और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोगों ने शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराया। ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान ग्राम पंचायत पवाना अहीर की एक बुजुर्ग महिला की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी समस्या का समाधान किया गया। तकनीकी कारणों से उनका वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा था। प्रशासन की टीम उनके घर पहुंची और ओटीपी आधारित प्रक्रिया से सत्यापन पूरा किया। इससे उनकी पेंशन फिर से नियमित होने का रास्ता साफ हुआ। इस पहल की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की। संभागीय आयुक्त और जिला प्रभारी सचिव वी शर्मा कुमार ने बानसूर उपखंड के भूपचेड़ा गांव में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि इससे खेती के साथ ऊर्जा उत्पादन का भी अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के उपयोग से किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। जिले में नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें पुलिस और संबंधित विभागों ने मादक पदार्थों की तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध शराब के मामलों की समीक्षा की। अधिकारियों को संयुक्त कार्रवाई जारी रखने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पिछले दिनों अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय खनिज विकास और पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक हुई। इसमें पुलिस विभाग, खनन विभाग, वन और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लागू नया सफर योजना की समीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय पर बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने पर कर, पंजीयन शुल्क और वाहन ऋण पर ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पिछले दिनों पावटा उपखंड के सुजात नगर में नट समाज उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने नट समाज की कला और सांस्कृतिक परंपराओं की सराहना

0: की। श्री बागड़े ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला पिछले दिनों आयोजित हुई। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण, जैविक खाद, फसल विविधीकरण और कम लागत वाली खेती की तकनीकों की जानकारी दी। इस महीने जिले में मानसून ने दस्तक दी। कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। हालांकि फिलहाल मानसून कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियां थमी हुई है। इसके साथ ही कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। साल 2030 ताई राजस्थान ने टीबी मुक्त बनावा रो लागस। राज्यपाल हरिभाव बागड़े पंचायतवार असरदार निगरानी माथे जोर दियो। आरजीएचएस माए नुआ बंदोबस्त आज लागू। मरीज 2000 रुपया ताई री जांच सीधी करा सकेला। प्रदेश ने ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भर बनावण और डिस्कोमरी माली हालात मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा माथे जयपुर माए मीटिंग हुई। और राज्य में मानसून रो पहलो दौर थमण रे पछे गर्मी और उमस रो असर बढ़ियो। समाचार रे साथे मैं शंभु सिंह और अबे समाचार विगतवार। राज्यपाल हरिभाव बागड़े टीबी मुक्त राजस्थान सारू पंचायतवार असरदार निगरानी क्रियाजाऊन सारू निर्देश दिया है। श्री बागड़े आज लोक भवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन री प्रगति री समीक्षा कर रिया हा। वना गांवा ने टीबी मुक्त करण सारू ग्राम सेवकारी जवाबदेही माथे जोर दियो। राज्यपाल कहो के टीबी रा आंकड़ा माए नहीं बल्कि व्यवहार माए हर एक मरीज माथे ध्यान देवन री जरूरत है जिनु टीबी रो पूरी तरह खात्मो करियो जा सके। राज्यपाल टीबी रोगिया ने नीक से मित्र की टी बांटिया। ई मौके चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो के राज्य ने साल 2030 ताई पूरी तरह टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बतायो कि राजस्थान में अभियान रो 90% लगस पूरो कर लीजियो है। बत्ती जोखिम वाला 11,032 गांव रो सर्वे करीजियो है। इन मायो 9,032 गांव में खास शिविर लगार टीबी मुक्त राजस्थान सारू कार्रवाई करीजी है। श्री खींवसर बतायो कि राजस्थान में देश में सब बत्ती एक्सरे स्क्रीनिंग करीजी है। राजेरा एनएचएम निदेशक जोगाराम बतायो के शहरी स्थानीय निकाय में टीबी मुक्त वार्ड अभियान चालू करियो जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में जांच सारू नुआ बंदोबस्त आज लागू हो गया है। इनके तहत 2000 रुपया ताई जांच सारू पहला मंजूरी नहीं लेवनी वेला वठे तुरंत जांच रा मामला में टीपीए ने एक घंटा में और दूजा मामला में 3 घंटा में मंजूरी देवनी वेला। तय भगत माए कोई फैसलो नहीं होन माथे अर्जीदार ने ऑटो अप्रूव्ड मतलब खुद मंजूरी मानी जाएला। वठी इमरजेंसी मामला माए पहला री तरह किणी तरह री पहला मंजूरी री जरूरत नहीं वेला। ध्यान जोगे के टीपीए रो खास का मरीजा ने कैशलेस इलाज और बीमा दवारी प्रक्रिया ने संभालनो है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए अस्पताल रे साथे मिलने इन्हें मंजूरी करे है। सरकार आरजीएचएस में जुड़िया सगड़ा प्राइवेट अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर ने इनरी कड़ाई पालना करने का निर्देश दिया है। देश भर में जुलाई महीना ने अंगदान जागरूकता महीना रा रूप में मनायो जावे है। ये कड़ी में प्रदेश में ही लोगों ने अंगदान स्वरूप प्रेरित करया जावे। राज्य अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन सोटम जुड़िया डॉक्टर धर्मेश शर्मा बतायो के न्यारी न्यारी जागरूकता गतिविधियां री मार्फत अंगदान जुड़ी गलतफहमियां दूर करी जाएला।
2: हम आम जन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रांडेड के बाद में अगर उनमें से 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
1: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज सिरोही जिला रा आबू रोड पुग्या। वना मानपुर माए भगवान बुद्ध री मूर्त रो अनावरण करियो। ई मौके

0: વડા ભગવાન મુદ્રા શાંતિ કરુણા અર માનવતાના સંદેશને જન જન તાઈ પુગાવણી અરજ કરી શ્રી અઠાવલે સદભાવ અર સામાજિક સમરસતાને આજરા બગતરી જરૂરત બતાયા ખબર નિમિષા સાથે બતલમાં વણા કહ્યો કે સરકાર જનહિત યોજનાવારી મારફત હર તબકાને રાહત દેવણરી કોશિશ કર રહી હૈ વણા કહ્યો કે MSME સેક્ટરને મજબૂત કરને રોજગારના મોકા બધાયા જા રહ્યા હૈ
1: MSME के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। किसानों की जो फसल है उस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा भाव मिले उसके लिए भी हमारे सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है। किसानों के खाते में 6,000 रूपए डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और जो भी बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजना आती है तो उनको पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से होगा।
0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली खास रेलगाड़ी आज जयपुर रा दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन रवाना हुई। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत इन्हें हरी झंडी दिखा रवाना करिया। आ रेलगाड़ी तीर्थ यात्रियों ने रामेश्वरम और मदुरे ले जावेला। ए मौके श्री कुमावत कहो कि तीर्थ यात्रियों री सुविधा सारू के इंतजाम करी जा है। बुजुर्गों ने किसी तरह की परेशानी नहीं हुए इस सारू यात्रा के दौरान अहलकार डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेला। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मेरा एक्स हैंडल @AIRNews_ जयपुर यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इन साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। प्रदेश ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भरता का तेजी कदम बढ़ा रियो है। इस सारू डिस्कोमरी माली हालात ने मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा ने लेर आज जयपुर माए समीक्षा मीटिंग भी मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री अगुवाई माए भी ई बैठक माए कर्ज पुनर्गठन बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर री प्रगति माथे चर्चा करी जी। मुख्य सचिव आधुनिक तकनीक ने काम माए लेवण और अक्षय ऊर्जा परियोजनावा ने भगत सर लागू करण री जरूरत बताई। वणा कहो के PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और दूजी सौर ऊर्जा परियोजनावा मिलन वाली बत्ती री बिजली भंडारण सारू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम महत्व है। इणु पीक आवर्स माए महंगी बिजली खरीदने री जरूरत कम होवेला और डिस्कॉम ने हर साल चोखी बचत वेला इन रो फायदो उपभोक्तावा ताई पुगेला। कोलंबिया माए भी 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड माए भारतीय टीम सोना रो तमगो हासिल करियो है। बुकारा मंगा माए भी ई होड माए कनिष्क जैन रिद्धेश अनंत बैडाले ऋषित गर्ग श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी भेड़ारिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई कामयाबी माथे भारतीय टीम रा सगला प्रतिभागियों ने बधाई दी है। श्री मोदी इन्हें देश री युवा शक्ति रो विज्ञान रे प्रति जुनून बताया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई देश रो मान बढ़ावन वाला आ हुनरवान नौजवाना ने बधाई देवता वारा चोखा भविष्य री कामना करी है। यार भाई मौसम राज्य में मानसून रो पहलो दौर थमण रे साथ ही गर्मी और उमस रो असर फेरू बद गयो है। घणकरी ठोड़ा तापमान माए बढ़वार भी है। दिन रे साथ ही रात माए उमस बणियोड़ी है। फलोदी माए काले पारो 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज करीजो। इनरे अलावा बीकानेर जैसलमेर चूरू श्रीगंगानगर और अलवर माए दिन रो तापमान 38 डिग्री सेल्सियस ऊपर रियो। उठी ने हनुमानगढ़ माए तेज गर्मी और उमस रे बीच आज दोपहर पछे मौसम बदलियो और कुछ देर अंधड़ रे साथ ही झमाझम बिरखावी। सिरोई माए छांटा छिड़कोवियो। मारा खबर नविश बतायो के आ दिना घनी तादाद माए सैलानी आबूराज री सुंदर वादियां रो लुत्फ उठा रिया है।
2: सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। पहाड़ियों पर छाए बादल धुंध से ढकी वादियां और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पर्यटक नक्की झील में नौकायान का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: मौसम महकमो 15 जुलाई रे पछे मानसून रो नुआ सिस्टम सक्रिय होने री आस जताई है। इन रे पछे 2-3 दिन माए कमजोर पड़ियो मानसून फिर गति पकड़न रा आसार है। आज जयपुर और भरतपुर संभाग रा 9 जिला माए कटे कटे छुटपुट बिरखा वह सके है। वठे आवता 2-3 दिन माए बीकानेर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू और आरएसआर रा हल्का माए हल्की बिरखारी आस है। जोधपुर अरबिका

0: निर्माय धूल भरी आंधी चालन रा आसार है। जयपुर शहर में ट्रैफिक बंदोबस्त सारू आधुनिक तकनीक रे साथ है नौवे शुरुआत होवन जारी है। इनरे तहत बेगाई सिग्नल रो फिक्स टाइमर बंद वेला और सगड़का माथे सीधा ट्रैफिक रा हिसाब सिग्नल अबे अपने आप बदलेला। न्यूज डेस्क को हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजीरी रिपोर्ट।
1: 24 घंटे काम करने वाली एआई आधारित ये व्यवस्था पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 39 दिनों तक इसका ट्रायल रामबाग सर्कल पर किया गया। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 488,000 से ज्यादा वाहनों ने सुगमता से चौराहा पार किया। ये एआई सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक ही मैनेज नहीं करता बल्कि अनुशासन भी बनाए रखता है। इस नई तकनीक से वाहनधारियों के समय के साथ ही ईंधन की भी बचत हो सकेगी। जल्द ही इसे पूरे शहर में विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
0: स्कूल शिक्षा महकमा कानियों काले जयपुर माए राज्य थरी वेबिनार रो आयोजन करियो जायला। स्कूल शिक्षा महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव बतायो के आ वेबिनार प्रदेश भर रा सगला पीएम श्री स्कूल रा प्रधान सारू वेला। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होवन वाला ई कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने असरदार लागूकरण नवाचार और सह शैक्षणिक गतिविधियां माथे मंथन करियो जायला। वस्त्र प्रदर्शनी भारत टैक्स 2026 काले नवी दिल्ली में शुरू वेला। देशरी सब मोटी वैश्विक वस्त्र नुमाइश रो आयोजन भारत मंडप में करियो जायला। 4 दिन री नुमाइश में कपड़ा फैशन प्रौद्योगिकी नवाचार निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार रा हल्का में भारत री बदती अगुवाई रो प्रदर्शन करियो जायला। ओ निर्माताओं निर्यातक वैश्विक खरीदार निवेशक नीति निर्माताओं अंतर्राष्ट्रीय नुमाइंदा मंडल कारीगर स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं ने एक मंच माथे लावेला। कोटा में आज एक सड़क हादसा में 2 लोगों की मौका माथे मौत वेगी वठे 2 दूजा घायल वे गया। हादसो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 माथे हैंगिंग ब्रिज कने एक बेकाबू कार रे पलट जावणु वियो। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। साल 2030 ताई राजस्थान ने टीबी मुक्त बनावण रो लगस। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पंचायतवार असरदार निगरानी माथे जोर दियो। आरजीएचएस माए नुआ बंदोबस्त आजू लागू। मरीज 2000 रुपया ताईरी जांच सीधी करा सकेला। प्रदेश ने ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भर बनावण और डिस्कोमरी माली हालात मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा माथे जयपुर माए मीटिंग भी। और राज्य माए मानसून रो पहलो दौर थमण रे पछे गर्मी और उमस रो असर बध्यो। नरेंद्र साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यू मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढुलम भरु चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। जी हाँ, समय हो चला है कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं डॉक्टर नमामि शंकराचार्य और संदीप पारिक।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाला जिका भी किसान भाई बहन है, आप सगला ने आप रोहितड़ो साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
1: और संदीप पारिकरा घना घना राम राम
0: राम राम। संदीप भाई आपने भी मारा घना
1: घना, आपने भी राम राम डॉक्टर नमामि शंकर जी।
0: देखो सा जोर लगार बोल रहे हो, इतना जोर ऊपर वाले नहीं कर रहे
1: भाई। देखो ये है थाना लागे में जोर लगार बोल रहे हो, पर बके के रहनी घायल की गति घायल जाने है।
0: हाँ हाँ।
1: तो मारे अब के सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुए, तो थोड़ी सांस खींच के बोलना पड़े। अब देखो अवस्था सारू सगली चीजा हुए, अब थार पर का मैं या मोटिया रहा जब तो बात ही की। अब देखो अब उम्र आ गई तो थोड़ी ऊंच नीच तो हो ही है।
0: देखा यहाँ ऊंच नीच ना करो, काम तो अजय बहुत बढ़िया है
1: भाई। काम को तो देखो डोई कोनी नेवड़ी को ना। और जब आप खेती बाड़ी से जुड़ेड़ा हाँ तो देखो लगातार काम कर वो करो बोले करनो भी पड़े, क्योंकि काम करे बिना तो अपन सरक होनी। तो वो जो को अबार जो मौसम चल रहे इन वक्त अपन खेती में क्या करना चाहिए?
0: देखो सा अबार अपार बीका ने हल्के री बात करा जन तो देखो अबार बरखा हो ही नहीं रही है, पर ये हफ्ते की बात अगर करा तो आपने कही है कि खरीफ की फसल जिकी है मेरे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाजरो है, मूंग है, मोठ है, गुवार है या फिर तिल, आज सब भी फसलों रो बगत

0: माथे करो, निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। तो खरपतवार उगे जनाबे आपारी जी की मूल फसल है, बिना जगह पोषक तत्व जगह बिना मिलना चाहिए, बे खरपतवार खुद ही गिट लेवे और बारह गिटने से कहीं हुए कि आपारी जी की फसल है वह निमड़ी पड़ जावे। तो ये वास्ते चीज़ों ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अब बुरखा तो चूंकि मौसम आ रही है, अब बुरखा वेले भी राम जी की मेहर होशी आप ये है, तो अपन एक बात ध्यान रखना है कि बुरखा रहे पक्ष है खेत मायने जल भराव नहीं होना देवो। कई बार कहीं हुए कि पानी भर जाए और खड्डा टाइप हो जाए, इो ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बिर अलावा आवश्यकता अनुसार नाड़िया की सफाई रखो, चाहे एक बात है खेतार में तो रखो ही रखो, घर बार में भी करनी चाहिए ताकि कहीं है कि कीचड़ नहीं हुए, गंदगी नहीं हुई, माखी मच्छर कम से कम हुए। और बिर अलावा फसलों रो नियमित निरीक्षण कर, सफेद माखी जिकी है या माहू है या इल्ली है, ऐसा कीटा रो निगरानी रखो ताकि एक कड़ी आ नहीं हुए कि आप ध्यान नहीं देवा और ए सब लट लाग जावे या उदय लाग जावे। तो ये लागण सो क्या है कि आपने आर्थिक क्षति है वा उठानी पड़ सके।
1: तो आप देखो अनुमान भाई, एक ही बार में सगली मोटी मोटी जी की बातें है बता दी। और एक चीज मैं और बताने चाहूँ कि मान लो कोई भी आप फसल ले रहे हैं तो भी मैं खाद की दरकार है या कोई कीड़ा मकोड़ बीमारी लाग जाए तो दवाई की दरकार है, तो बा आपन जितनी मात्रा भी पर लिखेड़ी है भांडिये पर बोतल पर बित्ती आपन काम में लेनी चाहिए, जितनी वैज्ञानिक लोग बतावे बित्ती अनुशासित जगह मात्रा है नी बा आपन काम में नहीं लेनी, बित्ती लेनी चाहिए ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। मीन सुखी है पहली बात तो फसल नुकसान होगी आशंका है, दूसरी बात भी दवाई है या खाद है पीसा लग है तो बा महंगी पड़े, तो आप जो ज्यादा लेवांगा तो इनको मतलब है कि आपने खेती की लागत बढ़ा रहा। तो इन चीज को आप थोड़ा सो ध्यान रखा और सागे सागे इन चीज को ध्यान रखा कि अब जी आन आरो जो को वगत है, अब जगह भाई लोग आप बार मान लो बिजाई कर दिए या खुद का कहीं साधन है, मैं तो देखो निनाण पर पूरा ध्यान दे हुई और आन आरे वगत के लिए आप अच्छी उन्नत किस्म जी है बा जरूर बावा।
0: अब भी सागे सागे अपन एक भी ध्यान रखने है कि बीज जिको है बिना उपचारित करना चाहिए। बीज उपचारित कर रख लो ताकि ज्या ही बिरखा हुए खेत मायने अगर आपने बीज बावना है तो आपारा बीज जिको है वो एकदम उपचारित हुए तो आपने फसल जिकी है वह बहुत ही शांतरी फसल आपने मिलेगा।
1: कहना मतलब कई बार क्या हुआ कि फसल में रोग बीमारी लग जाए नी जब आप चेता बीज उपचार करेड़ो है नी तो वह आगे की मेहनत आपने कदी करने की दरकार ही कौन पड़े। तो इन वास्ते बीजोपचार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: देखो सा किसान भाई बहना, आपने रे कहबत है कि पानी पहली पाड़ बांधनी, तो अब बरखा होवे पछे पर थेलिया लेर और पानी रोकने रो जतन करा तो बस पानी रुके कोने, बाने रोकने बाने थामने तो पहला सुई रो इंतजाम करना चाहिए। तो ई वास्ते आपारे बीज घेर देवा पछे आपा मुंडो लटकावा के ले खेत में तो बा फसल तैयार हुई कोनी हुई जकी कमजोर रही है तो आ नहीं हुए। बढ़िया वैज्ञानिक जकी फसल रे वास्ते वैज्ञानिक जका बीज बतावे बे बीज लावो और बिर अलावा भी बीज रे मायने उपचारित भी करो जिता वैज्ञानिक बतावे और दवाई जकी तक बात बताई है यहाँ दवाई बीती गेरो जीती दरकार है खेत ने। और यूरिया जकी है बाबी आप डालो तो एकदम सीमित मात्रा में जीती आपने जरूरत हुए, बिर अलावा आपा जैविक खाद रो भी उपयोग कर सका। तो ए तो ही आपारे सामान्य ई हफ्ते अपन जिको जिको काम करना है या आवना बखत में काम करना है, लेकिन आवना बखत रे मायने अब आपारो भी बखत बढ़ रही है बखत ही बात हुई जाने तो गीत रे साथे चला। तो आज मैं आपने हरजस सुनाऊ, सुनो साओ हरजस

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: तो संदीप भाई, देखो कि आप बात करी

0: चले जाओ। तो जरूरत इन चीज ये है कि गांव में मान लीजिए कोई पुरानी बावड़ी है या कोई टाडा है बनेड़ा या कुंड है, तो वहां पर आप ध्यान देवा कि बांगी मरम्मत जकी है बा करवाओ और भी मरम्मत न कराया पच्चे बाने इन प्रकार आप बना। देखो पुराना जगह निर्माण वेड़ा नहीं हमें भाई वेड़ा है चूनसू और चूनो हर साल के मजबूत हो तो जावे, तो बा चीजें थोड़ी सी जब आप सार संभाल कर लिया नहीं तो बा चीजें ना आप दोबारा सो एक नयो स्वरूप जो है वो दे सका।
1: सही तो सा बात चालती रहसी पर अब आपने गीत भजन खाने लिए चालू थाने विनती करूं मैं बारंबार मैं सिंह बड़गुजरो गायड़ो।

0: तो सर संदीप भाई अबार आप गीतरलो सुने तो बढ़िया थाने विनती करूँ मैं बारंबार महेश सिंह बड़े गुजरो तो सागे सागे एक बात और है कि आप गीत सुनावा सब अच्छी बात भी करा पर किसान भाई जी का है बारे वास्ते की योजनाएं हैं जहाँ बार एक लारे नाम आवे है किसान क्रेडिट कार्ड तो इस टाइप की योजना अगर किसान भाई ने अगर मिल जावे बीरे वास्ते सुविधा बन जावे कई बार सामान खरीदने वास्ते बीज खरीदने वास्ते तो इस बारे में भी थोड़ी जानकारी आज आप करा।
1: बिल्कुल सही बात बताई आप नवन भाई। किसान क्रेडिट कार्ड जो है नी जन आप बहुत छोटे रूप में केसीसी कह के रहा ओ किसान के लिए एक तरह से वरदान है। आ योजना जकी है किसान ने वगत पर पैसा मिले और कम ब्याज दर पर मिले और भी पैसा को उपयोग जो को है वो लोन लेना के माध्यम से कर सके और इनको उद्देश्य जो को है वो है कि जो को लोन भी न मिले बीस वो आपकी खेती बाड़ी में बीज ले ले खाद ले ले कीटनाशक ले ले या कोई सिंचाई का कोई साधन है वह ले सके कृषि यंत्र जगह है वह ले सके ये खेती बाड़ी में काम आना रहा जगह दूसरा सामान है वह भी किसान जो है इन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेके ले सके और सब बड़ो लाभ हुआ है कि जरूरत पड़ने पर किसान बिना अनावश्यक देरी के ऋण जो है लोन जो है वो ले सके और वगत पर ऋण चुकाना आ रहा जगह किसान है माने ब्याज में रियायत

0: वो लाभ भी मिल रहा है।
1: तो किसान भाई बहन देखो कितनी मोटी बात बताइए कि बगत पर अगर आप ऋण चुकावा तो अपन ब्याज रमाने क्या है रियायत भी मिले।
0: और एक चीज और है कि आज इन योजना को लाभ झुको है फसल उत्पादन के सागे तो आप ले हुए लेकिन इनके सागे सागे जी मान लो आप पशुपालन कर रहे हैं मतलब डेयरी चला रहे हैं या मछली पालन कर रहे हैं तो इनसे जुड़ा जो किसान है वे भी किसान क्रेडिट योजना जी है इनको फायदा ले सके।
1: तो सा किसान भाई बहना देखो अगर थे लोग भी अजय ताई किसान क्रेडिट कार्ड को नहीं बनवाए है कोई बात को नहीं पर अब भी आप जाग जाओ चेतो कर लो और आप रे नेड़ो रे नेड़ी जिकी बैंक है या सहकारी बैंक है उनसे संपर्क करो और जरूरी राज्य का दस्तावेज है मेरे सागे आवेदन करो और कार्ड जिको है थारी खेती ने आर्थिक मजबूती प्रदान करने रे सागे सागे साहूकारा माथे निर्भरता ने भी कम करेला यानी वो वक्त गयो जब साहूकारा खने ब्याज लेवन ने जानो पड़ता और जिको है आप रे दमड़ी वास्ते चमड़ी तक बे नोस लेता अबे तो अब सरकार जागृत है थारो संयोग कर रही है तो थे भी रो पूरो पूरो फायदा उठाओ और अबे बगत रो फायदा उठावा।
0: देखो मैं बताऊं नमे भाई इतनी देर तो आप हरजस सुनाया
1: अच्छा।
0: अब मैं ले रहा हूं एक बहुत ही मीठो फूटो सो हरजस आपको तो आप भी सुना और कार्यक्रम सुनने आ रहे भाई है बहना है भी सुना
1: जरूर
0: सुनो
1: सुनो सर

0: देखो सा किसान भाई बहना, आपना संदीप जी है कि तो शांत रोक तो मीठो हर्जे सुनाए हो कोई रामदेव रे अबे सिंह गहलोत रो गायड़ो। और अबे बात चाला बात करा बरखा री, बरखा हुई है हुवेला तो आपारा खेती बाड़ी री बात होगी, पर एक मोटी बात एक है बा है पशुपालन रो। तो बरखा हुए जन आपारा पशु जी का है, चाहे वे पशु दुधारू पशु हो चाहे बोझा ढोने वाला पशु हो, सब रही आपने क्या है जाप तो रखना पड़ से।
1: बिल्कुल। और देखो एक बात मैं बताऊं आपने नवो भाई कि बरसात जब दो है तो पशुओं के लिए राहत हो है, आपने लिए भी राहत तो है, लेकिन एक चीज है भी सागे सागे बा है कि चुनौतियां घनी है और इन मौसम में के जल भराव भी हो जाए, कीड़ा मकोड़ा भी हो जाए, तो आंसू अपन थोड़ा सो सावचेती जी की है बा रखने की दरकार है।
0: और अबे आपा साला पाछा गीत रखानी अर्जे सुनो क्या पहला?
1: हाँ
0: अर्जे सुनो सा।

0: तो हो तो हो हर्जस। और अब एक चीज थोड़ी सी मैं बात और बतानी चाहूँ। अब बार देखो अब यहाँ चौमासा में आप देखा कि चोखो तो सगड़ा नहीं लागे, पर क्या है कि इन बरसात का मौसम में कई प्रकार का संक्रामक और परजीवी रोग जका है वो खतरो जो है वो बढ़ जाए करे। तो आप हाँ खेती बाड़ी से जुड़े रहे और सागे सागे धीनो धापो भी रखा, तो जका भी पशु पालक है समय पर उचित प्रबंधन जो है वह करे ताकि पशुओं को स्वस्थ रहना जरूरी है और दूध उत्पादन और बारी कार्य क्षमता जिकी है वा भी बढ़े। और ये मैं कहूँ कि चौमासा में आप साफ सफाई पर पशुपालन पशुशाला जिकी है भी मैं खास ध्यान देवा और बरसात को जो को पानी है वो कठिन नहीं रुके और फर्श जो को वो सूखो और साफ जो को वो होना चाहिए और जल निकासी की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि मक्खी मच्छर जका है वह कीड़ा मकोड़ा नहीं पन पाए।
1: और दूसरी बात एक है कि बृखा रे मायने हरो चारो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, पर घणो गिलो जवे या घणो सड़ियो गड़ियो जो चारो पर पशुओं ने नहीं खिलाना चाहिए। आफ रो जाए पशु ने पाचन क्षमता कमजोर हो जावे, तो ई बात रो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। संतुलित दाणो भी देना चाहिए और जरूरत मुजब पशुओं ने हमेशा स्वच्छ और ताजो पानी है वो उपलब्ध कराना चाहिए। खुरपका मुँहपका गलघोंटू जो रोग है या लंगड़ा बुखार है अरे वास्ते जिका भी टीका है वे लगवा लेना चाहिए और पशु चिकित्सक जिकी सलाह है वा माननी चाहिए। मान और तुरंत अगर कोई पशु मान लो बीमार हो भी गए तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अब साथ चलता चलता एक अर्जस और सुना कृष्णा ब्यास रो गायड़ो।

0: तोसा सिंजार बेड़ा हो गई है और बकत हो गया है आप सो इजाजत लेवने खाते आप अपना येताड़ो साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
1: और संदीप पारिक ने सीख दी रहो सा घना घना राम राम, राम।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 7:45 हुए, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। जी हाँ, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ भजन, भक्ति संगीत।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

इसके साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजने को है, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के डूला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 हुए, आइए अब सुनते हैं लोक भजन।

0: ଆସି ରାମ ମରେ ଲୋ ଜଦିରେ ଧାରି ମୋ ମାୟାନେ ଛଡ଼ି କୋ ଦିନେ ତାଜିରେ।
1: इसके साथ ही लोक भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है, कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ 8:09 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज

0: भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा।

0: जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
2: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। एआई आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
3: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
4: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
3: Other operating income is not included.
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चुमू केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले

0: में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
0: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. He added that both sides also exchanged views on the India-EU FTA and explored ways to deepen business ties and expand India's commercial engagement with Spain as a valued partner. Mr. Goyal is currently on a 5-day visit to Spain, Belgium and Finland from today. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion,

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ दोस्ती फिल्म के लिए।

मोहम्मद रफ़ी के दोस्ती फिल्म के लिए गाई इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं शोक संगीत।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। रात्रि के 10 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: श्रोताओं नमस्कार। खेल जगत कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के खेल जगत कार्यक्रम में इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, बीपीएड, एमपीएड, पीएचडी, नेट, सेट, आईसीसी लेवल 2 के क्रिकेट कोच, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में स्टेट पैनल एम्पायर के रूप में आपने काम किया है। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 4PPM पदमपुरा में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हैं। साथ ही आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं मीम सारस्वत, बीपीएड, एमपीएड, आप क्रिकेट कोच हैं, साथ ही शारीरिक शिक्षक के रूप में आप काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी के रूप में आपने कई खेलों में भाग लिया है। तो आप दोनों का इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज इस खेल जगत कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं खेलों पर। डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, आप हमें ये बताएं कि खेल जो है हमारे जीवन में कितने जरूरी हैं और क्या खेलों का महत्व है।
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जो खेल है केवल मेडल जीतने के लिए, नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए खेलना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि स्वास्थ्य के रूप में अच्छे जीवन को जीने के लिए खेल जो है वो बहुत ही जरूरी है। भीम जी, आप क्रिकेट के कोच हैं, तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं खेलों के बारे में, तो क्रिकेट से शुरुआत करते हैं कि क्रिकेट की जो बच्चे में खेलने की जो भावना होती है जी। बच्चा जब खेलना शुरू करता है तो आप ये बताएं कि किस उम्र में बच्चे को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए और किस उम्र में बच्चे को इसकी शुरुआत करनी चाहिए।
2: पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। वैसे क्रिकेट की एक सही उम्र जो शुरुआती है इसकी, वो 8 से 10 साल के बच्चे को लगभग अपने शुरू करवा सकते हैं। जैसे क्या होता है, आगे जैसे जो

0: 16 जो टूर्नामेंट्स होते हैं जो स्कूली एसजीएफआई के या जो आरसीए के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें बच्चे उस टाइम तक बच्चे परिपक्व हो जाते हैं तो वहाँ पे वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और उन बच्चों का क्या है जो 8 से 10 साल के बच्चे हैं उनका बेस थोड़ा मजबूत हो जाता है।
1: जी यादव साहब, हमारे क्षेत्र में अगर हम क्षेत्र की बात करें, देश की भी बात करें, तो हमारे स्थानीय क्षेत्र में जो खेल यहाँ मोस्टली खेले जाते हैं, रुचि लेते हैं जिन खेलों में, तो वो कौन कौन से खेल हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं।
2: देखिए, खेल तो सारे खेल अच्छे हैं और हमारे देश में या हमारे आसपास जो ज्यादातर गेम खेले जाते हैं उसमें हम आप देखें कि आज का टाइम जो है क्रिकेट का है। आपको हर गली मोहल्ले खाली मैदानों में आपको क्रिकेट खेलते हुए छोटे बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति भी मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस दौर में जब भी खेलों का नाम आता है तो क्रिकेट जो है वो बड़ी ही रुचि के साथ बोला जाता है, सुना जाता है, खेला जाता है और देखा जाता है। तो सुनने में खेल के साथ में क्रिकेट जो है वो बड़ा ही सटीक रूप से जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन खेल बहुत तरह के अलग अलग खेल हैं जिनके बारे में, जितना मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो रुचि, जो नॉलेज हर आदमी क्रिकेट में जितना रखता है उतना शायद दूसरे खेलों में कम रखता हो, तो आप अन्य जो खेल हैं उनके बारे में भी बताएं।
2: बिल्कुल, क्रिकेट के अलावा बहुत से खेल हैं जिनको सरकार भी और प्राइवेट सेक्टर भी उनको बहुत ही प्रयास कर रहा है कि वो आगे बढ़े। जैसे हम अपने हॉकी का ले लेते हैं कि हॉकी का स्तर बहुत ही कॉर्पोरेट क्षेत्र और सरकार ने उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत लंबे समय के बाद हम ओलंपिक में मेडल भी जीत पाए, जो हमारे सरकार के प्रयासों को दिखाता है कि वो कितना प्रयास कर रहे हैं। बाकी एथलेटिक्स है, ओलंपिक में, एशियन गेम्स में देखेंगे कि कितने अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है भारत का और अच्छे मेडल्स भी आ रहे हैं। भारत सरकार की जो अच्छी स्कीम्स है, टॉप्स जैसी स्कीम चल रही है जिसमें बच्चों को फाइनेंशियली रूप से उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको अच्छे अच्छे ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स वगैरह अवेलेबल करा रहे हैं जिससे उनको बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है।
1: बिल्कुल,
2: कबड्डी लीग चल रही है, खो खो लीग शुरू हो गई है, फुटबॉल का भी अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। तो धीरे धीरे जो हमारे भारतीय खेल हैं उनको भी सरकार बढ़ावा दे रही है, उनकी भी लीग चल रही है, खो खो लीग, कबड्डी लीग इसका उदाहरण है।
1: जी जी,
2: और भी है
1: जी। आपने भारतीय खेलों के बारे में ये जो जानकारी दी, भीम जी आपसे मेरा ये सवाल रहेगा क्योंकि आप शारीरिक शिक्षा के अध्यापक भी हैं और इसमें जब बच्चे खेल की शुरुआत करते हैं तो मुख्य रूप से गार्जियंस की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है।
2: जी,
1: क्या भूमिका रहती है, क्योंकि आप कोच भी हैं, आप इस अनुभव से गुजरे भी हैं, तो आपको इन सारी बातों का नॉलेज भी है, तो ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: देखिए, पहले खेलों को महत्व दिया जाता था, फिर एक दौर आया जब लोग पढ़ाई की तरफ घूमे, लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं तो हर एक पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा खेले, अच्छा फिट रहे, ठीक है, वो अच्छा देश के लिए खेले, नाम रोशन करे। तो माता पिता का तो इसमें सबसे बड़ा योगदान यही है कि वो बच्चे को सपोर्ट करें, उनको टाइम टू टाइम जो भी है गेम्स, जिस गेम में बच्चा रुचि रखता है
1: जी,
0: उस संबंधित गेम में उसको एकेडमी है, चाहे उसको घर पे, चाहे जिस हिसाब से, एक बार उसकी शुरुआत करवाएं और फिर उसको आगे धीरे धीरे धीरे मौका मिलता रहेगा, तो एक निश्चित रूप से एक अच्छा प्लेयर बनेगा।
1: बिल्कुल, तो ये जो चयन यादव साहब जो खेलों का बच्चा करता है कि उसको हॉकी खेलना है, क्रिकेट खेलना है, खो खो खेलना है, कबड्डी खेलना है, तो इसके चयन में माता पिता की, गार्जियंस की क्या भूमिका रहती है?
2: इसमें मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट तो बच्चे का ही देखा जाता है।
1: बिल्कुल,
2: पेरेंट्स का जो रोल है वो उसको सपोर्टिव रोल में रहना चाहिए
1: जी।
2: अपना कोई सपना उस पर थोपना नहीं है कि जी मैं यही बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरे गेम में है, आप जबरदस्ती उधर करेंगे तो उसके साथ अन्याय होगा।
1: बिल्कुल, ये बच्चे की रुचि जो है वो महत्वपूर्ण रहती है। यादव साहब, आप भी शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हैं और आप पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, तो स्वास्थ्य जो है उसका और खेल का दोनों का क्या तालमेल है और कितना प्रभाव खेलों से स्वास्थ्य का जुड़ा हुआ है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। और आज के वर्तमान जो परिवेश है
1: जी,
2: उसमें तो जो स्वास्थ्य है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सभी की।
1: बिल्कुल, पहला सुख निरोगी का।
2: निरोगी का, या बहुत अच्छा आपने बताया कि आज जो है बहुत ही सेडेंटरी लाइफ लोग जी रहे हैं, हर चीज मशीन से होने लग गई है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो चुकी है
1: जी।
2: जिसकी वजह से खेल का बड़ा पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है
1: जी।
2: यदि आप नहीं करेंगे तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे
1: जी।
2: जितना आप शारीरिक व्यायाम और करेंगे आप डॉक्टर से उतना ही बचे रहेंगे, उतनी बीमारियों से बचे रहेंगे आप। इसलिए आप जरूरी है कि आज के टाइम में आप खेल से, या मैं तो कहूंगा रोज आपको 1 घंटा खेलना चाहिए, कोई सा भी गेम खेले,
1: कोई भी खेल।
2: कोई

0: अपनी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, एक घंटा जरूर आप अपने लिए निकालिए।
1: जी भीम जी, खेलों में रोजगार जो है वो भी देखा जाता है और जरूरी भी है।
0: जी जी।
1: तो क्रिकेट में रोजगार की क्या संभावनाएं रहती है ये आप बताएं, उसके बाद हम यादव साहब से दूसरे खेलों में भी रोजगार की बात करेंगे। तो पहले तो आप क्रिकेट के बारे में बताएं कि क्रिकेट से रोजगार की क्या संभावनाएं रहती है।
2: आज के जमाने में क्रिकेट में भी अनेकों अवसर हैं, जॉब के हैं, जो जिसके अंदर अपने क्रिकेट कोच हो गया, अंपायरिंग हो गया, स्कोरिंग हो गया, या अपने जो गवर्नमेंट है वो भी जो खिलाड़ी हैं उनको, जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको भी गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाती है वो
1: जी।
2: तो एक अच्छा प्लेयर है तो वो उसको निरंतर कहीं ना कहीं उसको, चाहे कल को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ना खेल पाए, बट उसको उस चीज से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है जिससे वो आगे अपना अकेडमी में करियर बना सकता
1: बिल्कुल,
2: है।
1: ये अच्छी बात आपने बताई यादव साहब। दूसरे जो खेल हैं उनके बारे में भी रोजगार की संभावनाएं जो है वो खेलों से कितनी रहती है वो भी बताएं।
0: हर व्यक्ति क्या है यहाँ अपने रोजगार के लिए काम करता है
1: जी,
0: वैसे भी खेल ही जो है वो भी रोजगार का अवसर है। पहले कहते थे कि जी पढ़ाई और खेल के है दोनों विपरीत, ऐसी धारणाएं बना रखी थी, जो आदमी खिलाड़ी होगा वो पढ़ेगा नहीं, जो पढ़ेगा वो खेल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप हर खिलाड़ी जब खेलना शुरू करता है तो वो इसी मनोभाव से शुरू करता है कि मैं देश के लिए खेलूंगा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनूंगा। लेकिन हो सकता है नहीं बन पाए, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं बात करूं ट्रेडिशनली जो पारंपरिक जो जॉब के फील्ड है, जैसे टीचर बनना है, कोच बनना है, ट्रेनर बनना है, लेकिन आज के परिवेश में बहुत ही इमर्जिंग करियर ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं। जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, कमेंटेटर है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है। मैं स्टूडियो में बैठा हूँ आपके कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं, तो ये फील्ड बहुत अच्छा है, आप ये सब चीजें चुन सकते हैं। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप। आज का युवा जो है केवल रोजगार ढूंढ नहीं रहे, रोजगार दे भी रहा है।
1: दे भी रहा है, वो कैसे?
0: स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप जी है जो है उसके अंतर्गत व्यक्ति, मतलब आपको अपनी फील्ड में आप महारत हासिल है, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स अकेडमी बनाते हैं
1: जी,
0: तो स्पोर्ट्स अकेडमी में आपको कोच भी चाहिए, ट्रेनर भी चाहिए, ग्राउंडमैन भी चाहिए, स्कोरर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आप एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाने का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: स्पोर्ट्स वियर जो कपड़े बनाते हैं, शूज बना रहे हैं आप, बहुत सी कंपनियां हैं, तो आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। केवल नौकरी करने तक ही सीमित नहीं रह गया है आजकल जो है। आप देखते हैं आईपीएल देखते हैं और कबड्डी लीग देख रहे हैं, आप देखो टेबल पे कोच के अलावा लैपटॉप लेके कुछ लोग बैठे होते हैं, वो लोग होते हैं स्पोर्ट्स एनालिसिस, जो एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्लेयर का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, पीछे कैसा किया है, उस आधार पे उन लोगों का ऑक्शन में लिया जाता है, उन लोगों को उस तरीके से अपनी टीम में शामिल करते हैं। तो हर गेम में आपको स्पोर्ट्स एनालिस्ट चाहिए ही चाहिए प्लेयर की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। और इतने बहुत से सारे क्षेत्र हैं, आप यहाँ आएंगे और ढूंढेंगे तो बहुत सारे क्षेत्र मिलेंगे और बहुत ही सम्मानजनक।
1: बिल्कुल, ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था और इसके बारे में जो विस्तार से आपने बताया और इतना जो है अवसर खेलों में रोजगार के आपने बताए। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा जी आपसे कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं जो भी क्लास में पढ़ता जा रहा है, खेलों में भाग लेता जा रहा है, तो उस बच्चे को क्या बेनिफिट मिलता है खेल का? क्या उसको अलग से कोई मार्क्स मिलते हैं या अलग से कोई बेनिफिट बच्चे को होता है? तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप बताएं।
2: देखिए, सबसे पहले इसमें है जो शिक्षा के साथ साथ जो खेल है ये भी बहुत महत्व रखते हैं बच्चे के लिए, और खेलों के अंदर जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उनके बेस पे अपने को गवर्नमेंट जॉब्स में आगे
1: बेनिफिट
2: मिलता है, और इससे बच्चे के आगे कोई बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो वहाँ भी उनको एडमिशन लेने में थोड़ा सा आसानी रहता है, जिससे क्या है स्पोर्ट्स कोटे के अंदर बच्चों का एडमिशन जल्दी हो जाता है
1: क्योंकि जी,
2: और धीरे धीरे जैसे बच्चे आगे नेशनल है या इंटर यूनिवर्सिटी है, ऑल इंडिया गेम्स ये खेलते जाते हैं, तो इनके सर्टिफिकेटों से क्या है सरकारी नौकरियां भी जल्दी मिल जाती है।
1: यादव साहब, क्या सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स पॉलिसी में ऐसा कोई बच्चों को अलग से बेनिफिट मिलता है जिससे बच्चे को लाभ मिल सके?
0: बिल्कुल, मैं भीम जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान सरकार की पॉलिसी है
1: जी,
0: आउटकम पॉलिसी है, जो प्लेयर को जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में जो मेडल लेके आते हैं उनके लिए डायरेक्ट पोस्टिंग का प्रावधान है
1: जी,
0: उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनको पोस्टिंग दी जाती है
1: जी,
0: और नेशनल लेवल पे कुछ मेडलिस्ट हैं या फिर जो भी वर्ल्ड लेवल के जो टूर्नामेंट है उसके अंदर मेडल लेके आते हैं या पार्टिसिपेशन करते हैं, 2% का स्पोर्ट्स कोटा भी राजस्थान सरकार ने प्रोवाइड करा रखा है, तो बहुत अच्छी ऊपर

0: डॉक्टर साहब आप आज इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं और बात हम कर रहे हैं खेलों की, खेलों का कहीं संगीत से भी कोई संबंध है और अगर है तो किस तरह से है, और इसके साथ साथ मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि आपका कोई फेवरेट एक गीत जो आप सुनना चाहें तो वो भी हम आपको सुनाएंगे, तो वो भी आप बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि खेल और संगीत का कोई मेल है, बिल्कुल मेल है
0: जी।
1: संगीत क्या है, खिलाड़ियों में एक जोश पैदा करता है
0: जी।
1: आपने देखा होगा आईपीएल में कि बहुत से मोटिवेशनल सॉन्ग चल रहे होते हैं और उसके अंदर जोश आ जाता है,
0: धुन जो होती है।
1: और आपने फिल्म देखी होगी चक दे इंडिया
0: जी,
1: और उसका गाना मुझे बहुत पसंद है चक दे इंडिया, जो उसका टाइटल सॉन्ग है
0: जी।
1: और वो हर जगह आपको हर स्पोर्ट्स इवेंट्स में बजता हुआ दिखेगा आपको
0: जी। जी बिल्कुल,
1: प्लेयरों के अंदर मोटिवेशन के लिए संगीत बहुत बड़ा रोल अदा करता है
0: जी।
1: आपने हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जी का इंटरव्यू सुना होगा और उनके काफी कोलीग्स का भी इंटरव्यू आया था कि जब वो टेंशन में रहते थे ना, जब मैच खेल रहे थे ग्राउंड पे रहते थे तो सॉन्ग गुनगुनाते रहते थे, अपने फेवरेट गाना गाते थे, तो क्या वो अपने स्ट्रेस को एंजाइटी को कम कर रहे थे गाने से। तो क्या सॉन्ग क्या है, रिलैक्सेशन देता है
0: जी,
1: आपके एंजाइटी कम करता है, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहता है म्यूजिक का हमारे खेल में।
0: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई, और साथ ही आपको सुनवाते हैं फिल्म चक दे इंडिया का आपका ये फेवरेट गीत।

0: यानी बच्चों में खेल के साथ साथ खान पान में क्या जरूरी होता है, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, या स्पेशल कोई डाइट बच्चों को दी जानी चाहिए, या किस तरह की डाइट खिलाड़ियों के लिए जरूरी है?
1: देखिए, आजकल सबसे ज्यादा बच्चे जो क्या है फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं
0: जी,
1: तो उनसे क्या है मोटापा और ये ज्यादा होती है। तो खिलाड़ी के लिए घर का जो खाना है उसका वो खाए, बाहर की चीजें वो ना खाए, जो प्रोटीन और जो मिनरल्स वगैरह उसको जो चाहिए उसकी बॉडी को उसके खेल के द्वारा, वो उन्हें एक अच्छा डाइट प्लान या एक अच्छे डाइटिशियन से राय करके और वो चीजें ले उससे।
0: यादव साहब, आप भी शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में डाइट के बारे में आप भी कुछ अगर बताना चाहें तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: बिल्कुल, न्यूट्रिशन जो है वो हर खिलाड़ी के लिए और आम आदमी के लिए भी जरूरी है
0: जी।
2: एक आम व्यक्ति के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता थोड़ी कम है, लेकिन जो एक प्लेयर है वो एक स्पेसिफाइड ट्रेनिंग करता है उसके हिसाब से उसकी डाइट भी अलग होनी चाहिए उसकी आवश्यकता के अनुसार। कोई स्ट्रेंथ का वर्क कर रहा है, कोई एंड्योरेंस का वर्क कर रहा है, उसके लिए अलग अलग डाइट प्लान्स होते हैं, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से युवाओं को एक चीज के लिए सावधान रहने के लिए कहूंगा कि बहुत से फिटनेस सेंटर्स हैं जहाँ पे ये लोग जिम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ के जो कुछ लोग ट्रेनर्स हैं जो बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरीके का प्रोडक्ट खाइए, इस तरीके का सप्लीमेंट लीजिए, आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी, वो कर जाएगी, तो उससे क्या है आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है
0: जी।
2: डोपिंग, हमारे स्पोर्ट्स की भाषा में उसको डोपिंग कहते हैं कि इस तरीके की आप चीजें यूज करेंगे जहाँ पे स्टेरॉइड्स है और ये सब चीजें यूज करने से हार्मोन चेंजेस आने लग जाते हैं
0: जी।
2: और वो कहूंगा कि आपके घर में आपके आसपास इतने नेचुरल सोर्सेज हैं
0: जी,
2: आपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए वो सब चीजें खा सकते हैं। आपने भी खाया होगा, हमारी दादी अम्मा और वो लोग बताते दलिया बनाते थे
0: जी, बिल्कुल
2: है ना, और दलिये के अंदर आप बताओ चार पांच तरीके के अनाज मिक्स करके और उनको बनाते थे, तो आप देखिए कि वो कितना हेल्दी हुआ करता था। अब डॉक्टर भी कहता है कि बीमार हो गए जी, खिचड़ी खाना है आप,

0: तो खिचड़ी खाने से आदमी सही हो जाता है, तो स्वस्थ आदमी खाएगा तो वो बीमारी नहीं होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप अपने नेचुरल सोर्स पे रहिए, आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है
1: जी।
0: आप अपने नेचुरल सोर्स पे रहिए, दूध दही सबके घर पे होता है, बढ़िया खाइए।
1: एनर्जी देने वाली जो पारंपरिक जो भोजन है वो आपके हिसाब से खिलाड़ी के लिए, बहुत ग्रामीण क्षेत्रों की आपने बात की, पारंपरिक भोजन की आपने बात की, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे खेलों में रुचि रखते हैं, आज के इस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही है और वो कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं?
0: देखिए, प्रतिभा शहर और गांव नहीं देखती है
1: जी।
0: तो बस ये है कि डाइट के नेचुरल सोर्स ग्रामीण परिवेश में अभी भी उपलब्ध है, जो अभी भी अपने घर का खाना और घर की चीजें यूज करके अच्छा अभ्यास कर लेते हैं
1: जी।
0: हाँ, शहर है, जो छोटा शहर है, बड़ा शहर है, वहाँ प्रैक्टिस की सुविधाएं अधिक होती हैं
1: जी।
0: और ग्रामीण परिवेश में क्या सुविधाएं कम होती हैं, हमारे कोच या ट्रेनर के एक्सपर्ट्स नहीं मिलते, बच्चा अपने लेवल पे ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो उन बच्चों, ग्रामीण जो टैलेंट है, सरकार को ऐसा करना चाहिए, वहां से उनका नर्चरिंग करके उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाए। हाँ, सरकार ऐसा काम कर रही है, लेकिन अभी रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो भी काम है वो भी है, बहुत अच्छा टैलेंट है ग्रामीण परिवेश में, उनको लाने के लिए और अच्छे प्रयास होने चाहिए
1: जी। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि किसी भी खेल में जो एक चयन होती है कि बच्चा पहले जिले में खेलता है, उसके बाद में राज्य स्तर पर खेलता है, और उसके बाद में नेशनल लेवल पर और फिर इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं।
0: हाँ, देखिए, अभी कोई खिलाड़ी खेलना शुरू करता है तो उसके पास दो अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे पहले तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? विद्यालय से
1: जी।
0: विद्यालय ही उसका सबसे पहला जो स्टेज है वो है, वहां से अपने स्कूल के बच्चों में वो पहले खेलता है, और वहां से उसके टैलेंट को देख के उसको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद वो अपने जिला स्तर पे खेलता है, यदि वो वहां अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बाद वो अपने जिले का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य के टूर्नामेंट में भाग लेता है। फिर वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद फिर वो राष्ट्रीय स्तर पे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो अपने आप को लेके जाता है।
1: डॉक्टर चंद्रशेखर यादव साहब, आप शारीरिक शिक्षक हैं और क्रिकेट कोच भी हैं, तो सबसे पहले एक सवाल मन में ये उठता है कि ये फिजिकल एजुकेशन जो स्कूलों में आजकल जरूरी भी कर रखी है, तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? और दूसरी बात कि एक बच्चा मेहनत करके क्रिकेट खेल के या किसी भी अन्य खेलों में भाग लेकर के, और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अगर इसी क्षेत्र में आना चाहता है, मैं आपसे ये कहूँ कि वो अगर शारीरिक शिक्षक भी बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा?
0: बिल्कुल, बहुत ही वर्तमान परिवेश में चलने वाला टॉपिक आपने उठाया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, हमारी जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके अंतर्गत भी खेल को एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की बजाय उसको मेन स्ट्रीम में शामिल किया गया है। जैसे कि साइंस है, मैथ है, और ये सब्जेक्ट मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट है, वैसे खेल को भी हमारी नई शिक्षा पॉलिसी में उसको मेन स्ट्रीम में शामिल किया गया है, और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है।
1: बिल्कुल,
0: जिसके अंतर्गत खेल और शारीरिक शिक्षा को महत्व को और भी महत्व दिया गया है
1: जी।
0: तो जैसे आपने पूछा कि एक बच्चा कोई शारीरिक शिक्षक बनना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या कोशिश करे और क्या वो आगे का अपना रोड मैप तैयार करे कि मैं इस फील्ड में जाऊं, तो बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अलग अलग रास्ते हैं। जैसे 11 ट्वेल्थ में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 11 ट्वेल्थ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे बाकी हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन लेके पढ़ाई करनी है, फिर वो आगे 12th के बाद एक कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है हमारा, बीपीएड 4 इयर्स का कोर्स,
1: वो 12वीं के बाद,
0: हाँ, प्लस 2 के बाद 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। और इसके अंदर ये देखा जाता है कि बच्चा क्या है, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, और 11 12th में उसके पास फिजिकल एजुकेशन हो
1: जी,
0: और उसके बाद हमारे जो CUT UG का एग्जाम होता है, उसके अंतर्गत एग्जाम दे के सिलेक्ट होते हैं और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है
1: जी,
0: उसके बाद उनका एडमिशन होता है
1: जी।
0: आफ्टर ग्रेजुएशन भी बीपीएड का कोर्स होता है 2 साल का, उसके बाद 2 साल ग्रेजुएशन के बाद करने के बाद आप इस फील्ड में आ सकते हैं, और अपने इस जर्नी को स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर MPED कीजिए, NET कीजिए, SET कीजिए, PhD कीजिए, उसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं।
1: लेकिन आपको बैकग्राउंड से या शुरुआत से आपको खेलों से जुड़ा होना जरूरी है,
0: जरूरी है,
1: और शुरुआत से ही आप इसमें भाग लेकर के, और
0: हाँ, एक आप एक ये मान जाइए कि क्वालिफिकेशन है बेसिक की, बच्चा स्पोर्ट्स खेला हुआ होना चाहिए और फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा होना चाहिए।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटी की, प्रतिभाओं

0: आगे बढ़ने के अवसर की। अब इसमें सवाल ये उठता है कि बच्चों के साथ साथ बालिका शिक्षा जो है वो भी आजकल खूब उस पर जोर दिया जा रहा है, तो महिलाओं में बिंदी क्या संभावना रहती है खेलों में, इन प्रतियोगिताओं में और इस फील्ड में आने के लिए?
1: आज के टाइम में महिलाओं को भी सरकार है या जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं भी उनके जो बच्चियां हैं वो आगे खेलें,
0: क्योंकि लड़कियां जो है वो कहीं लड़कों से कम नहीं है, महिलाएं जो है वो कंधे से कंधा मिला करके आज खेल का क्षेत्र हो या कोई दूसरा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।
1: पहले क्या था, एक सीमित खेलों के अंदर ही लड़कियां खेलती थी, मगर आज के टाइम में आप कोई भी ऐसा गेम उठा लो उसके अंदर अपनी लड़कियां ना खेलती हों, ठीक है, चाहे वो क्रिकेट है, क्रिकेट भी बहुत अच्छा अपनी इंडिया की टीम है और राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छी टीमें बनती है
0: महिला क्रिकेट
1: की। बाकी और कोई भी गेम्स है जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, इसमें बहुत सी अच्छी प्लेयर्स हैं, वेट लिफ्टिंग हो गया जो बहुत ऐसे माना जाता है सिर्फ पुरुषों के लिए खेल है, उसमें भी ऐसे खिलाड़ी आए हैं, बॉक्सिंग है वो भी एक बहुत दमखम वाला खेल माना जाता है, उसमें भी महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और ओलंपिक में भी मेडल दिलवाए हैं भारत को।
0: बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटी जो है महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा है, इसमें कहीं कम नहीं है। और महिलाएं जैसा कि हम देखते हैं आज पूरे देश का सम्मान जो है वो विदेशों में बना रही है, देश को जीत और बहुत सारे पदक महिलाओं ने दिलवाए हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ओलंपिक में जब पहली बार वेटलिफ्टिंग आया तो हमारे कर्ण मल्लेश्वरी जी ने हमें मेडल दिलाया जो कभी इस फील्ड नहीं मिला था, और उसके बाद देखिए बॉक्सिंग में, कुश्ती में कितनी महिलाओं ने देश का नाम रोशन कर देश के लिए मेडल लेके आए।
0: जी बिंदी, चूंकि कार्यक्रम का समय अपने पास कम है तो आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्रिकेट में युवा अगर अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं तो आपका उन युवाओं को क्या संदेश रहेगा?
1: क्रिकेट हर कोई खेलता है, हर कोई एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है
0: जी,
1: मगर उसके लिए सबसे जरूरी बात है मेहनत और अनुशासन
0: जी,
1: ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, अनुशासन का टॉपिक मेहनत के साथ साथ बहुत जरूरी
1: है जी, क्योंकि क्या है कभी कभार आज चलो ठीक है बारिश आ गई नहीं प्रैक्टिस पे जाना, आज ये हो गया आज वो हो गया, जब तक आपका अनुशासन नहीं है ना तब तक आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। तो आप एक अच्छे प्लेयर बनना है तो आपको इन दोनों चीजों को साथ साथ मिला के ही चलना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, कंटिन्यूटी के साथ साथ अनुशासन और मेहनत जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर चंद्रशेखर यादव साहब, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप हमारे जितने भी युवा है कार्यक्रम सुनने वाले हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं किसी भी खेल के रूप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका सभी युवाओं को क्या संदेश रहेगा?
2: आपके माध्यम से सभी युवाओं को यही संदेश रहेगा कि अच्छी भावना से आप खेल में भाग लें और खेल खेलें
0: जी,
2: और कोई ऐसे प्रपंच में नहीं फंसे कि जिससे आपका फ्यूचर खराब हो। मैं यहाँ पे नशे की बात करना चाहूंगा कि युवाओं को अपने नशे से दूर रहें, अपने खेल पे फोकस करें, और दूसरे जो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको इसकी ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करते हैं, कोई आज कोई मेडिसिन दे रहे हैं कुछ दे रहे हैं, आप उसके आदि हो जाते हैं, इसलिए आप उन चीजों से बच के रहें और अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए अपने फ्यूचर पे ध्यान दें और अच्छा खेलें और अपना, अपने परिवार का, अपने राज्य का और अपने राष्ट्र का विकास करें, एक स्वस्थ राष्ट्र विकसित करने में
0: जी
2: भूमिका अपनी निभाएं।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। थोड़ी सी चर्चा इस बात पे भी कर लेते हैं कि स्कूलों में जब बच्चों का, चाहे वो छठी क्लास में हो या दसवीं क्लास में हो, तो आपके हिसाब से क्या जरूरी है कि शुरुआत में खेल के साथ बच्चों को जोड़ा जाए?
2: हाँ बिल्कुल, मैं तो सिक्स एट प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को शुरू करना चाहिए गेम। मैं तो बताऊं कि आपको, हम लोग खेला करते थे तो आप बच्चों की मोटर एबिलिटी बहुत अच्छी थी
0: जी।
2: आजकल के बच्चे क्या है, मोबाइल में, फोन में, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो उनके अंदर मोटर एबिलिटी की कमी भी आ गई है
0: जी।
2: मोटर एबिलिटी मैं बताना चाहूंगा जो इनहेरिटेड जो हमारी कैपेसिटी होती है
0: जी।
2: जैसे कि स्टेमिना है, एजिलिटी है, स्ट्रेंथ है, बैलेंसिंग जो है और समन्वय जो स्थापित करते हैं हम, वो आपस में मिलने जुलने से ही होता है, क्योंकि बच्चा एकांकी हो गया है
0: जी,
2: वो मोबाइल पे भी जी और किसी से मिल ही नहीं रहे, तो उसके अंदर वो समन्वय की भावना और भाईचारे की भावना नहीं है, उसको शुरुआत से ही खेलों में उसको भाग लेना चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई, समन्वय का भाव जो है वो खेलों में बहुत जरूरी होता है। भीम जी ने अनुशासन का भी बताया, कंटिन्यूटी भी बताई, तो ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से आज हमारी चर्चा हुई। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी और भीम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुधाओ खेल जगत कार्यक्रम में आज इस परिचर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में स्टेट पैनल अंपायर और क्रिकेट कोच, शारीरिक शिक्षक भीम सारस्वत। इस कार्यक्रम के संयोजक थे नवीन सिसोदिया, सूत्रधार और प्रस्तुति श्रीपाल सारस्वत की।

Kil Jagat. अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए अब सुनते हैं ललित कुमार व्यास की आवाज में ये भक्ति रचना।

भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं अनुप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब ये संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को यह कुछ ही पल में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को